सुनो शारदा 90.8 FM। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हरे कृष्णा। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवत गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं, जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने, जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने वाली बातें हम आपके साथ साझा करते हैं और बहुत कुछ खास होता है इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से। ये सारी बातें जन जन तक हम पहुंचा रहे होते हैं। तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं कि आपको अपने शहर ग्रेटर नोएडा का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कैसा लगता है। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमारे साथ हमारे टीचर जुड़ जाते हैं, वो टीचर जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें तराश रहे होते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातें वो हमसे साझा कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं। पढ़ाने की जो बातें वो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि BGMC की पास आउट स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़ रही हैं और उनका जो नाम है वो है प्रियंवदा। 2016 में इन्होंने यहाँ से कोर्स किया जिसका नाम है BGMC। तो प्रियंवदा, आपका फाइनली सुनशारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू सो मच सर।
3: कैसा फील कर रहे हैं, काफी टाइम के बाद आप अपने कैंपस में आए हैं और अपने स्कूल में आए हैं, अपने टीचर से आप मिल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं?
4: सर, स्कूल वापस आके तो अच्छा लगता ही है, टू मीट ऑल द ओल्ड टीचर्स हु बीन देयर। कुछ टीचर्स तो आई थिंक हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हियर एंड बाकी जो टीचर्स यहाँ पे, आई ऑलवेज हैड अ वेरी स्पेशल रिलेशन विद ऑल ऑफ देम एंड आई यूज टू वर्क अ लॉट। मैं प्रैक्टिकली 3 साल मैंने फैकल्टी रूम से ही अपनी पढ़ाई की।
3: ओह ग्रेट,
4: बिकॉज़ वहां पे आई यूज्ड टू बी द एडिटर फॉर द न्यूज़पेपर आल्सो शारदन्स की।
3: एक्सीलेंट,
4: तो मैं प्रैक्टिकली वहीं पे रहती थी।
3: मुझे यूं है कि मैं बहुत चक्का क्यों रह गया, इसके पीछे एक वजह है कि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि उनको पता ही नहीं होता कि फैकल्टी रूम कहां है। मतलब आपने वहां अपनी कुर्सी जमा ली और लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे, तो क्या क्या सीखा उस दौरान आपने?
4: सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई लर्नड वाज द कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क, कि कुछ भी हो, जो भी काम हो, 100% वही उसी को करना है विद फुल फोकस एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यहाँ पे टीचर्स आर वेरी वेलकमिंग फॉर स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स एंड टू लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज वो आई थिंक सबसे बड़ी सीख होती है। अगर अपनी मिस्टेक्स से आप खुद सीख के आगे बढ़ो, तो जो 3 साल मैंने यहाँ पे अपना सीखा है, वो माय टीचर्स हैव बीन माय कांस्टेंट सपोर्ट। इनफैक्ट ऑल माय टीचर्स, स्पेशली एक अभिषेक सर थे, अशरफ सर थे, इन्होंने ही मेरे को पुश किया था यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए।
3: ग्रेट, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा?
4: उनके साथ सर सीखने को बहुत मिलता था। उनकी क्लासरूम ऐसे क्लासरूम नहीं लगती थी, इट यूज्ड टू बी मोर लाइक सिटिंग, टॉकिंग टू हिम, वर्किंग विद हिम। वो साथ में काम करते थे बच्चों के साथ एंड लाइक वहां से उससे सीख बहुत अच्छी मिलती थी। टू एक इनफॉर्मल एटमोसफियर जो क्लासरूम में होता है, तो लाइक आई थिंक फॉर मी वो बहुत अच्छा सीखने का एक्सपीरियंस था।
3: अभिषेक सर से तो फोन पे बातचीत हो जाती है?
4: हाँ, अभिषेक सर से भी आई हैव बीन इन कॉन्टेक्ट उनके साथ, पर वो थोड़ा सा वो मतलब आप वो बहुत पुश करते हैं स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट कि अगर उनको पता है कि व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, वो कितना आगे जा सकता है, तो उनसे तो प्रैक्टिकली हमेशा डांट ही पड़ती रहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो।
3: अच्छा प्रेमदा, मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत कुछ आपने सीखा अपने टीचर से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, मुंबई जब आप गए तो कितना काम आया? आपको लगा कि अगर काश मैं वहाँ ये सारी चीजें मिस कर देती तो मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट करती। जो आपने सीखा यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी से अपने टीचर से, कितना काम आया?
4: सब बहुत काम आया। इनफैक्ट मैं यहाँ पे जब मेरे को सेकंड ईयर में शारदन्स का एडिटर बनने का मौका मिला था सेकंड ईयर से, सो मैं 2 years आई वाज द एडिटर हियर। मेरे को एक तो टाइमलाइन, हाउ टू वर्क विद इन अ टाइम लिमिट, एंड स्टार्टिंग जब मैंने एडिटर से की थी तो वहाँ पे भी मैंने स्टार्ट एज अ राइटर किया था। एंड आई रोट स्क्रिप्ट फॉर टीवी शोज, नॉन फिक्शन टीवी शोज, एंड फिर मैं जब क्रिएटिव फील्ड में गई तो एक सर वो जो फाउंडेशन यहाँ बनी थी
3: वो वहाँ काम आया,
4: वो बहुत वहाँ काम आया। इनफैक्ट उसी पे बिल्ड हुआ है मेरा करियर।
3: एक्सीलेंट। ये आंसर में इसलिए जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ इंटर्न्स आते हैं, बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि हम यहाँ से पास आउट हैं, इतने फैमिलियर हो चुके होते हैं कि वो उस चीज को सीखना या समझना नहीं चाहते। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बातें अभी शुरू हुई हैं, लेकिन इस मैसेज को मैं अभी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इस बात का संबंध आपकी बात से संबंध है। तो क्या उनको कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ सीखें, किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, क्या एक मैसेज होगा?
4: मैं अगर वो मैसेज बताऊं सर, इट इज एक्चुअली कि शारदा में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आपको जिस डायरेक्शन में सीखना है, जो सीखना है, टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव हियर, एंड टू द फैक्ट कि आप स्टार्ट करके यू कैन बिल्ड योर फाउंडेशन,
3: राइट,
4: कि आगे व्हेन यू गो इन द वर्ल्ड यू कंटिन्यू योर करियर, इट रियली हेल्प्स, एंड यू कैन फॉल बैक टू योर फाउंडेशन एनी टाइम। वापस आके यू कैन रीलर्न एवरीथिंग फ्रॉम दीज टीचर्स, दे आर दैट ओपन टू यू एज अ स्टूडेंट। एज अ पास आउट, आई हैव पास्ड आउट इन 2016, बट टू स्टार्ट लर्निंग, बट टू कम बैक टू द रूट्स एंड जस्ट टॉक टू द टीचर्स एंड लर्न, आई थिंक दिस इज द थिंग, क्योंकि लर्निंग आई फील देर इज नो एज टू लर्न।
3: बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, जब चाहे आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि बुनियाद अगर आपकी मजबूत होगी तो उस पर आप इमारत को खड़ा कर सकते हैं, और आपकी बेशक इसमें कोई शक वाली बात है नहीं कि आपकी जो नींव मजबूत रही अपने टीचर्स के सानिध्य में, आपने बहुत कुछ नाम कमाया है, कमा रही है। सो लिसनर्स, मैं बताना चाहूंगा मेरे साथ जुड़ी हुई है प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, आप हैं प्रेमवदा। तो प्रेमवदा के साथ बहुत सारी बातें हो रही है, ये परिचय मैं इसलिए बताना भूल गया, लगा अरे नहीं आप नहीं तो स्टूडेंट है। प्रेमवदा, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपके साथ जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ, मेरे साथ हैं प्रेमवदा जो कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर हैं। सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM। मीडिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है और कहा जाता है कि ये मजबूत स्तंभ है, और यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि शारदा विश्वविद्यालय आपके लिए बाहें पसारे इंतजार कर रहा है। यहाँ का जो मास्कॉम है, यहाँ का जो स्कूल है, बहुत सारे स्कूल में यूँ कहें कि स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं विदेश में, मुंबई में अपना योगदान दे रहे होते हैं। जैसे कि प्रेमवदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि 2016 में यहाँ से पास आउट रही हैं। BGMC का कोर्स इन्होंने किया, इसके बाद मुंबई का सफर रहा, और उसके बाद जो मैं अभी थोड़ा ऑफ एयर मेरी आपसे बात हो रही थी, 2019 का रुख किया आपने विदेश की तरफ। ये फर्दर स्टडी के लिए आपको जाना हुआ या कुछ प्रोजेक्ट की वजह से जाना हुआ उधर?
1: 2019 में मैं गई थी जर्मनी फॉर अ 1 ईयर कोर्स इन फिल्म मेकिंग। मैंने अपना मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग किया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को एज अ स्पेशलाइजेशन लेके। सो एक साल का मेरा कोर्स था वहाँ पे, मेट फिल्म स्कूल करके एक फिल्म स्कूल है बर्लिन में, एंड वहाँ से आई हैव डन माय 1 ईयर ऑफ मास्टर्स।
0: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का कल्चर और वहाँ के कल्चर में कितना जमीन आसमान का फर्क महसूस करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल पे जोर ज्यादा दिया जाता है या थ्योरी पढ़ाई जाती है?
1: वहाँ पे प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस रहता है। इनफैक्ट एज अ फिल्म स्टूडेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिल्म एज अ ऑडियंस ना देख के, एज अ स्टूडेंट देख के उस पर क्या अपनी क्रिटिक आप दे सकते हो, वो आपकी थॉट बिल्डिंग करवाते हैं वहाँ पे। कि एक फिल्म को अगर आप देख रहे हो नॉट एज एन ऑडियंस बट एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टूडेंट, तो टेक्निकलिटीज पहचानने का और डिफ्रेंशिएट करने का आप में वो टैलेंट एंड वो स्किल वो लोग डिवेलप वहाँ पे बहुत कराते हैं।
0: ग्रेट। उसके बाद फिर जो आप जर्नी रही,
1: yes.
0: वो कैसी जर्नी रही वहाँ, मतलब आपने कुछ प्रैक्टिकल वहीं किए, वहीं काम किया, या उसके बाद बैक टू पवेलियन या हिंदुस्तान आना हुआ?
1: जब मैं बर्लिन में थी, इन 6 मंथ्स इनटू माय कोर्स, वहाँ पे तो लॉकडाउन लग गया था बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। तो फर्स्ट लॉकडाउन वाज, वहाँ पे नोबडी न्यू कि क्या है, कैसे है, क्लासेस कैसे होंगी, क्या होगा। सो कपल ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे मिलके, इनफैक्ट मेरा एक सीनियर है यहीं शारदा का, वो भी वहाँ पे था, हम दोनों ने मिलके एक फिल्म बनाई। एंड प्रैक्टिकल वी थॉट कि जो हमने अभी तक सीखा है 6 महीने में उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो स्कूल से वहाँ पे भी बहुत सपोर्ट मिला इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ स्टूडियो, इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे टीचर्स से डिस्कस करना इतनी नॉलेज वो कि हम ये फिल्म शूट करना चाहते हैं। सो वो सारा लेके वी मेड एक्सपेरिमेंटेड विद अ शॉर्ट फिल्म, 3 मिनट की फिल्म है, इट इज ऑन लाइक 1 टेक में हमने पूरी शूट करी है, एंड इट इज कॉल्ड कोल्ड मीट। वो लेके भी टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव, जब हमने फिल्म उनको प्रेजेंट करी तो उन्हीं का आइडिया था कि अब इस फिल्म को लेके तुम थोड़ा फिल्म मार्केट एक्सप्लोर करो और सीखो। तो वो भी वहाँ पे बैठ के किया था कि हम लोग ने फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म डाली, फिर सीखा कि कौन सी मार्केट में कैसी फिल्म चलती है, क्या होता है।
0: तो किस लेवल पर वो फिल्म गई आपके?
1: वो फिल्म US में हैज वन अवार्ड्स एज बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, एंड आई वाज नॉमिनेटेड फॉर प्रोड्यूसर आल्सो इंडी फिल्म फेस्टिवल्स में इन लॉस एंजलिस। इंडिया में भी 2 फिल्म फेस्टिवल्स, ग्लोबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और गोवा फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म हैज been selected and has won award.
0: Oh, great. बधाई हो। आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, बहुत सादगी से बातें अपनी रख रहे हैं, अदरवाइज तो लोग ये कहते हैं कि आसमान में उड़ रहे होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बातें हमसे शेयर कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा या इसके आसपास की मैं बात करूँ, इस एरिया में दिल्ली NCR में भी फिल्म फेस्टिवल्स होते रहते हैं, जैसे कि शारदा यूनिवर्सिटी में भी अभी KFF कुछ फिल्म फेस्टिवल हुआ था। ग्रेटर नोएडा के अलावा मैं बात करूँ, नोएडा में भी फिल्म फेस्टिवल हैं और आने वाले समय में यहाँ फिल्म सिटी आ रही है। तो क्या कभी कोई यहाँ अपनी फिल्म को लेकर आप आगे गए, एक बात, और दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जो फिल्म सिटी आ रही है कितना स्कोप होगा स्टूडेंट्स के लिए? 2 बातें।
1: सर, ये फिल्म तो अभी फेस्टिवल सर्किट में चल ही रही है, मैंने इसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, क्योंकि माई एम वॉज टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल फिल्म मार्केट। इंडिया का तो लाइक बींग एन इंडियन एंड बींग स्टूडेंट हेयर वर्किंग इन बॉम्बे, थोड़ा बहुत आइडिया तो अंडरस्टैंडिंग फिल्म मार्केट की थी, बट बाहर का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए दिस फिल्म पर्पज वॉज दैट। अब आफ्टर द फिल्म फेस्टिवल सर्किट नेक्स्ट ईयर फिर ये फिल्म हम लोग यहाँ पे नोएडा दिल्ली में थोड़ा उसको वो करेंगे
0: एक्सप्लोर करेंगे
1: एंड इन टर्म्स ऑफ अगर यहाँ पे फिल्म सिटी आ रही है फॉर स्टूडेंट्स आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न द बेसिकली प्रोडक्शन फिल्म प्रोडक्शन जो हम पेपर पे सीखते हैं और जो हम फिल्म सेट पे सीखते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है एक फिल्म एटिकेट होती है जो सेट पे
0: राइट
1: एज अ प्रोफेशनल जब आप स्टेप इन करते हो फिल्म सेट पे वो आई थिंक क्लासरूम के बियॉन्ड एक लर्निंग है
0: बिल्कुल सही कहा
1: वो आप यहाँ पे ऑन पेपर विद टीचर्स जितना सीख सकते हो बट व्हेन यू स्टेप इनटू दैट फिल्म सेट और व्हेन यू स्टेप इनटू लाइक इन अ प्रोफेशनल फील्ड वो आई थिंक स्टूडेंट्स विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जब यहाँ पे फिल्म सिटी बन जाएगी इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो मतलब सबको बॉम्बे नहीं भागना पड़ेगा
0: दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा स्कोप रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ से पढ़ रहे हैं यहाँ से पास आउट हो रहे हैं अभी आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ दी है प्रेमवदा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जब आप फील्ड में उतरते हैं मैदान में उतरते हैं डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या कुछ और उस समय बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं कि नो डाउट जैसे आपने खुद कहा कि मैं यहाँ से सीख कर गई थी तो मुंबई में मुझे वो सारी चीज़ें काम आई कुछ लोग तो जाहिर सी बात है कि अपने समय को ख़राब कर रहे होते हैं

0: साल या चार साल, व्हाटएवर जो भी है, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि मुझे पका पकाया मिल जाए। एक तो धैर्य की कमी होती है, दूसरा ये भी होता है कि वो सुनना पसंद नहीं करते। अगर टीचर, जाहिर सी बात है टीचर के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट सुनना नहीं चाहते, फिर वो डायरेक्टर की या असिस्टेंट डायरेक्टर की कैसे सुनेंगे? अगर वो सारी चीजें, यूं कहें कि जो आप एटिकेट्स की बात कर रहे हैं, तमीज की बात कर रहे हैं, अगर किसी विद्यार्थी में वो सारी चीजें हैं, सुनने की क्षमता है, सीखना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा। और जिस विद्यार्थी के पास ये सारी चीजें नहीं है, क्या कहना चाहेंगे?
1: अभी भी टाइम है सीखने को। बट वहां पे जाके आपको कोई दोबारा, अगर आपने गलती करी, कोई बैठ के समझाएगा
0: नहीं? समझाएगा, राइट।
1: ये एक चीज है, वहां पे अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, विद वन
0: किसी को मतलब नहीं है आपसे, राइट,
1: तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। आप अपनी मिस्टेक जहां तक आप जब तक रियलाइज करोगे, फिर टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, वो थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है।
0: क्या कहना चाहेंगे शारदा, यूनिवर्सिटी में, अपने स्कूल में काफी समय के बाद आप आए हैं, रेडियो स्टेशन उस वक्त आपका आपके सामने बन रहा था, और आज आप रेडियो स्टेशन में हैं एक, और आपका एक साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ, सो कैसा फील करते हैं अपनी कॉलेज में आकर, रेडियो स्टेशन में आकर, क्या कहना चाहेंगे फाइनली?
1: एक्चुअली सर, आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि जहाँ पे, मतलब व्हेन हम लोग थे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना एम्फेसिस ऑन अ फिल्म स्कूल, ऑन मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं था, एंड नाउ अब आके देख रही हूँ कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हो गई हैं। सो आई फील लाइक कि एज स्टूडेंट्स वी मिस्ड आउट ऑन दैट। हम लोगों को हर चीज के लिए वी वर लाइक अपने से वो करते थे,
0: जी जी,
1: बट नाउ यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज देख के फॉर स्टूडेंट्स आई फील रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड।
0: रियली नाइस। सो मैं भी यही कहूंगा आपकी बात का एक निष्कर्ष निकालते हुए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस अवसर का उनको फायदा उठाना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं या फ्रीलांस अपना कुछ काम करना चाहते हैं, जो सीखने का मौका आपको मिल रहा है, जिंदगी शायद वो दोबारा आपको सीखने का मौका ना दे। और अगर आप किसी डायरेक्टर के साथ काम करें तो धैर्य, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पैशन के साथ आपने उस पेशेंस को जब आप कैरी करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो आएगा, परिणाम जो आएगा, वो सुखद आएगा। सो प्रेमवदा, मुझे आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, और खास बात ये अच्छी लगी कि जो आपने कहा वो मैंने पाया आपकी सादगी में, और मैं आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दुआएं करता हूँ, और सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: सो लिसनर्स, आप थे हमारे साथ प्रेमवदा, जो कि एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8fm। मैं हूं गगन, मुझे दीजिए अनुमति, जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। टाटा बाय, टेक केयर।
2: प्ले, क्या बात है।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सरपट भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हर दम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
1: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
0: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
2: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो।

0: इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
3: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑनली सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग। आई हाय

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:12 हो चुके हैं, 3 तारीख है। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कल के मौसम का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कल हमें उम्मीद थी कि बारिश होगी, झमाझम बारिश होगी, लेकिन शाम तक आते आते यकीन मानिए कि दिल्ली NCR सूखा सूखा गुजरा। हो सकता है कि कहीं कहीं आसपास इलाकों में छुटपुट बारिश हुई हो, छींटे पड़े हों, लेकिन आज की अपडेट क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आज का ग्रेटर नोएडा में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा सकता है और मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई जा रही है, और जिससे हवा में नमी अधिक होने के कारण उमस बनी रहेगी। इसके अलावा और क्या अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उत्तराखंड से लेकर मुंबई की जो सड़कें हैं, चेन्नई में भी यूँ समझ लीजिए कि बारिश बारिश बारिश नज़र आ रही है। हालात भी बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर बार हम जिक्र करते हैं क्योंकि वो जो नाले हैं चौक हो जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ उसमें कूड़ा करकट डाल रहे होते हैं, समय पर सफाई नहीं हो रही होती। अब उसके बाद क्या, उसके बाद रिजल्ट तो यही आएंगे ना कि नाले चौक होंगे, ओवरफ्लो पानी सड़कों पर बहता हुआ नज़र आएगा, पोल्स में करंट उतरता हुआ नज़र आएगा, घटनाएं दुर्घटनाएं होती हुई नज़र आएंगी, जो सीवर के जो ढक्कन हैं वो खुलते हुए नज़र आएंगे, यानी कि वहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। ऐसी घटनाओं दुर्घटनाओं से अपनी समझदारी से आप अपने आप को बचा कर रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ गड्ढा है तो आप कुछ लोग जैसे चिन्ह लगा देते हैं तो वो आप कर सकते हैं, या तुरंत सरकारी अमले को, प्रशासनिक अधिकारियों को, जो कर्मचारी हैं उससे संबंधित आप उनको सूचित कर सकते हैं। सो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन हम चाहते हैं कि दुर्घटना ना घटे, इसलिए सावधानी अपनाई। गुड मॉर्निंग सुप्रभात।

0: मैं हूं गगन आपके साथ, बस बारिश की जाए। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।
1: ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: क्या आपको पता है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी कैसे फैलती है? ये फैलती है मच्छरों के काटने से।
1: खुद को और अपने परिवार को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय।
0: हमेशा मच्छरदानी में ही सोएं।
1: दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं।
0: मच्छर अगरबत्ती जैसी मच्छर रोधी उपायों को जरूर अपनाएं।
1: पूरी बाह वाले कमीज, पैंट और मोजे पहनें।
0: और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए
1: पानी की टंकी को पूरी तरह ढक कर रखें।
0: घर के भीतर तथा आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें।
1: फ्रिज के पीछे नीचे की तरफ लगी हुई ट्रे, टायर और खुले में रखे कोई भी बर्तन में जमा पानी को नाली में बहा दें।
0: कूलर और गमले वगैरह को हर सप्ताह खाली करके सुखाएं।
1: और गड्ढों को मिट्टी से भर दें, जिससे उसमें पानी जमा ना हो।
0: याद रखना, बुखार में देरी
1: पड़ेगी भारी। संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर
0: 1800-180-5145 पर कॉल करें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: ओले ओले ओले, ओ शोनक। हेलो, कौन?
5: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
6: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
5: जल्द मिलते हैं।
4: हेलो हेलो हेलो,
7: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
8: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम हमेशा आपको अप टू डेट रखें और अपडेट देते रहें कि हमारे आसपास क्या खास हो रहा है। जैसे कि बारिश का मौसम, जो मौसम है वो शुरू हो चुका है, तो ऐसे समय में जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेक पर जाने से पहले, आपने खुद जन संदेश सुने कि दस्त की समस्याएं आम हो जाती हैं, साफ सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, डेंगू से अपने आप को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो बारिश के मौसम में सेहत, खान पान और घर का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेंगू, मलेरिया और वायरल जैसी बीमारियों से अपने आप को बचा कर रखेगा। खान पान में यानी कि बाहर का तला भुना आप खाना ना खाएं, हल्के फल आप खाएं और कटे फल से आप अपने आप को बचा कर रखें। हमेशा ताज़ा और गर्म पका हुआ खाना खाइएगा। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए अपनी डाइट में अदरक, लहसुन, हल्दी और हरी सब्जियां आप शामिल कर सकते हैं और दिन में एक दो बार तुलसी और शहद वाली चाय पीना भी बहुत फायदेमंद बताते हैं मच्छरों से।
9: ये क्या था?
2: वो डायलॉग याद आ रहा था मुझे,
9: एक मच्छर। हाँ, खैर आगे खबर बताओ जल्दी से।
2: हाँ, तो खैर मच्छर से निकल कर आते हैं, मच्छरों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। यानी घर के आसपास या कूलर और गमलों में पानी इकट्ठा बिल्कुल ना होने दें। रुके हुए पानी में ही डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। हाइजीन का आप ख्याल रखें, यानी कि साफ सफाई का भी विशेष तौर पर ख्याल रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। यानी कि अगर आप बारिश में कहीं भीग कर आ रहे हैं तो अपने बदन को साफ रखिए, यानी कि स्नान आप कर सकते हैं, नहा सकते हैं। गीले जूतों को धूप में आप सुखा कर रखिए और अगर गीले हो जाएं तो उनमें अखबार भर कर रख दें ताकि नमी और बदबू दूर हो जाए। अपने गीले कपड़े, आप कहते हैं ना कि कुछ लोग गीले कपड़े पहन लेते हैं, उससे भी आप अपने आप को बचा कर रखिएगा। ये कुछ बेसिक बातें, हमारा फर्ज बनता है कि इन बेसिक बातों को ज़रूर हम आपके साथ साझा करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशाद 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।
10: अच्छा लगता है।

नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी, जहाँ पहले एक

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
0: बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ 9:41 3 तारीख। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: इस गांव में पहले बहुत लोग रहते थे। एक राजा के प्रकोप से एक ही रात में सबने एक साथ गांव छोड़ दिया, पर एक प्रेम कहानी यहां की अमर रह गई और वो है इनकी।
2: ये तो तुम जैसा।
3: हाँ नाया, ये लड़की तो फोटो में तुम जैसी है, कहीं हम दोनों सोलमेट्स तो नहीं है?
2: तुम मुझे राजस्थान घुमाने लाए हो या डराने लाए हो?
3: क्या पता हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों पुराना हो, है ना? अरे अरे अनाया, बात तो सुनो मेरी। थैंक यू।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: से मोहब्बत कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में ही नहीं होता।
1: लास्ट वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। शायद कभी कभी ऐसा हर किसी के साथ नहीं, लेकिन कभी कभी किसी के साथ होता जरूर है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, में हूं अगर आपके साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को सरल सुगम आसान बनाइए। जितनी झंझटें आप पालेंगे तो दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी, और उसके बाद माइग्रेन यानी कि सर दर्द, थकान, नींद आना, इस तरीके की दिक्कतें परेशानी आपके सामने बहुत ज्यादा आ सकती हैं। लेकिन आयुर्वेद भी ये कहता है कि माइग्रेन से अपने आप को बचाने के लिए अजवाइन बहुत मुफीद है, लाभकारी है, और आयुर्वेद में इसके बहुत सारे गुण बताए, तो इसके बारे में आप मालूम हासिल कर सकते हैं। लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि तनाव से अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतने आप हेल्दी रहेंगे। वक्त का इशारा हो रहा है, जाते जाते मैं कुछ खास बातें आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जैसे कुछ और भी बातें शेष हैं। यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार 3 जुलाई को देश के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां तेज रहेंगी, और इस तरीके से बारिश की संभावना जताई जा रही है। सो प्लीज बारिश से पहले अपने आप को अलर्ट, सावधान रखिएगा। ग्रेटर नोएडा में क्या खास है उसके बारे में भी जान लेते हैं। नोएडा एयरपोर्ट के पास गरीबों के लिए छोटे रिहायशी प्लॉटों की योजना आने वाली है, तो इसके बारे में भी आप मालूम हासिल कर सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। इसके लिए जरूरी है कि मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव आप मुझे सुन सकते हैं, और ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बात है, जिंदगी को जीने की बात है, ये तमाम बातें हम यहां से आपके लिए ऑनर कर रहे होते हैं। 0120 अर्थात शहर का STD कोड लगाना ना भूलेगा, 120 ये STD कोड है। 20 40 60 205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, 40 60 205 40 60 205। एक बार फिर से मैंने रिपीट कर आपको बता दिया, 120 शहर का STD कोड नंबर है, 40 60 205 के जरिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का, आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूँ गगन आपके साथ, नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं यूरिक एसिड के विषय में। जी हाँ, गर्मियों के इन पांच चीजों से यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है, या यूं कहें कि छू मंतर किया जा सकता है। जोड़ों में दर्द और किडनी की समस्याओं से भी आपको राहत मिल सकती है। वो कैसे, आइए बात करते हैं कि गर्मियों में यूरिक एसिड का स्तर कंट्रोल करने के लिए आप कई तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं। सबसे पहले बात करते हैं गर्मियों में यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए उन चीजों के विषय में जो आप जानना समझना सुनना चाहते हैं। तो बात सामने आती है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहतर लाइफस्टाइल और खानपान की जरूरत होती है। अगर आप अस्थिर जीवन शैली और गलत खानपान का सेवन करते हैं तो इससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इन परेशानियों में ब्लड में यूरिक एसिड का बढ़ना भी शामिल है। जी हाँ, ब्लड में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने की वजह से कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं, जिसमें किडनी डैमेज होने से लेकर जोड़ों में दर्द की परेशानी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि ब्लड में यूरिक एसिड का स्तर कंट्रोल में रहे तो इसके लिए खान पान पर ध्यान दें। गर्मियों में मिलने वाली कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे यूरिक एसिड के स्तर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही बातों के विषय में। नारियल का पानी। शरीर में यूरिक एसिड का स्तर कंट्रोल करने के लिए आप गर्मियों में मौसम में रोजाना एक गिलास नारियल पानी पिएं। नारियल पानी में मौजूद गुड़ यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में प्रभावी हो सकते हैं। साथ ही ये बढ़ते वजन, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं को दूर रखने में भी आपकी मदद कर सकता है। अब बात खीरा की। गर्मी में खीरा खाने से न सिर्फ आपके शरीर को भरपूर मात्रा में पानी मिलता है, बल्कि ये आपके शरीर को ठंडक भी प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही खीरा खाने से आपके ब्लड में यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है। खीरा में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स यूरिक एसिड के स्तर को कंट्रोल करने में भी प्रभावी माने जाते हैं। बात आंवला जूस की। गर्मियों में आंवला से तैयार चटनी, जूस, मुरब्बा जैसी चीजों का सेवन करने से आप अपने ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हाई यूरिक एसिड की समस्याओं के लिए रामबाण साबित हो सकता है। साथ ही ये आपकी इम्यून पावर को भी बूस्ट करने में भी प्रभावी होता है। अब बात नींबू का रस, या यू कहें कि नींबू का करें आप सेवन। गर्मियों में नींबू पानी पीने से न सिर्फ आपका वजन कंट्रोल होता है, बल्कि ये शरीर को भी हाइड्रेट रखता है। इसके साथ ही यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में भी नींबू का पानी काफी फायदेमंद माना जाता है। इसका सेवन आप सुबह खाली पेट करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा। अब बात बेरीज फायदेमंद है, क्या क्यों कैसे बात करते हैं। गर्मियों में आपके मार्केट में ढेर सारे बेरीज यानी स्ट्रॉबेरी, जामुन, ब्लूबेरी और चेरी इस तरीके से आपको मिलते हुए नजर आते हैं। इन बेरीज का सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर कंट्रोल रहता है और दरअसल इसमें विटामिन सी और विटामिन के 1 पाया जाता है, जिससे यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रही हैं और डाइट में अगर आप कुछ ऐसी 5 चीजों को शामिल करती हैं तो निश्चित तौर पर आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगी। हम बात करना चाहते हैं कि अगर आप मां बनना चाहती हैं तो अपनी डाइट में उन चीजों को शामिल करने जिनसे फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में। सबसे पहले बात यही सामने आती है कि हर कोई यही चाहता है कि उसके घर आंगन में किलकारी गूंजे, बच्चा दुनिया में हंसता खेलता आए, और इसके लिए जरूरी है कि कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। जरूरी ये भी है कि खान पान आपका बहुत अच्छा हो। जरूरी ये भी है कि डॉक्टर से समय दर समय आप सलाह लेते रहें। लेकिन आज मेरे पास क्या खास जानकारी उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप मां बनना चाहती हैं, मां बनना हर महिला के लिए सबसे सुखद एहसास होता है, लेकिन गलत खान पान, खराब जीवन शैली और बढ़ते तनाव के कारण महिलाओं की प्रजनन क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। आज के समय में महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या काफी बढ़ गई है। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं को हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं उन्हें अपनी डाइट में ऐसी चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए जिससे गर्भधारण करने में आसानी हो। तो आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में जिनका सेवन करने से महिलाओं की फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। फॉलिक एसिड के विषय में, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो अपनी डाइट में फॉलिक एसिड का इंटेक बढ़ा दें। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार प्रेगनेंसी प्लान कर रही महिलाओं को करीब 400 mcg फॉलिक एसिड का सेवन करना चाहिए। फॉलिक एसिड का सेवन करने से जल्दी प्रेग्नेंट होने में मदद मिलती है, साथ ही प्रीमैच्योर बर्थ, मिसकैरेज का खतरा भी कम होता है। इसके लिए आप बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां और नट्स का अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के विषय में। बात सामने आती है कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही महिलाओं को अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। ये ओवरी से निकलने वाले एग को फ्री रेडिकल से बचाने का काम करते हैं, साथ ही महिलाओं की प्रजनन क्षमता बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इसके लिए आप फल, सब्जियां, बेरीज और सूखे मेवे खा सकते हैं। अब बात सामने आती डेयरी प्रोडक्ट्स की। जी हाँ, जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए। ये फूड्स न केवल फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं बल्कि हड्डियों को मजबूत बनाने का भी काम करते हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में दूध, दही, अंडे और पनीर जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। बात फाइबर की, जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं उन्हें अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड्स को शामिल करना चाहिए। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, इससे प्रजनन क्षमता में सुधार होता है और एग की क्वालिटी भी बेहतर होती है। इसके लिए आप फल, सब्जियां और साबुत अनाज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बात ओमेगा 3 फैटी एसिड के विषय में, जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं उन्हें अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स को शामिल करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त फूड्स का सेवन करने से प्रजनन अंगों में रक्त प्रवाह बढ़ता है, साथ ही हार्मोन्स का संतुलन भी बना रहता है। इसके लिए आप अपनी डाइट में अखरोट, चिया सीड्स, सोयाबीन ऑयल, फ्लैक्स सीड और एवोकाडो को भी शामिल कर सकते हैं। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं बात हेल्थ की में। आज जो विषय है गर्मियों में रोज सुबह जल्दी नाश्ता करने से मिलेंगे ये 6 जबरदस्त फायदे। बच्चों और बुजुर्गों सभी को इससे लाभ होगा। जी हाँ, ब्रेकफास्ट हमारी डाइट का सबसे जरूरी आहार है क्योंकि इससे ही शरीर को पोषक तत्व मिलने की शुरुआत होती है। ब्रेकफास्ट में देरी करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए जानते हैं कि जल्दी नाश्ता करने के फायदे क्या क्या हैं। तो बात सामने आती है, एक विषय हेडिंग के तौर पर सामने आता है कि सुबह जल्दी खाना खाने के क्या क्या फायदे हैं। स्वस्थ रहने के लिए जितना जरूरी सही डाइट लेना है उतना ही जरूरी डाइट को समय पर लेना। पहले खाना खाने का लोगों का एक ही समय होता था, लेकिन अब खराब लाइफस्टाइल और बढ़ते वर्क प्रेशर के कारण खाने पीने की आदतें भी खराब हो रही हैं। ऑफिस जाने वाले लोग हो या फिर सुबह देर तक सोने वाले लोग, हर कोई सुबह के खाने को समय पर नहीं खाता है। देखा गया है कि लोगों को नाश्ता करने में भी 10 से 11 बज जाते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार भी सुबह जल्दी नाश्ता करना जरूरी होता है। हम आपको सुबह के समय जल्दी नाश्ता करने से मिलने वाले फायदों के बारे में ही बताएंगे। यदि आप भी सुबह घर से बाहर जाते समय ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं या फिर सुबह देर से उठने के कारण खाना भी देर से खाते हैं, तो आपके लिए ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या करें क्या ना करें। सुबह के समय जल्दी नाश्ता करने से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शरीर को मिलती है एनर्जी, ये एक विषय है। सुबह के समय जल्दी ब्रेकफास्ट करने से जो सबसे ज्यादा मुख्य फायदा होता है वो है आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार होना। सुबह का खाना आपके मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करता है जिससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। इसलिए आप जितना जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं उतना ही जल्दी आपको मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है और आपको एनर्जी मिलना शुरू होती है। अब बात करते हैं, डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा अगर आप नाश्ता करेंगे सुबह का। शरीर का पाचन अच्छा रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका पाचन अच्छा है तो शरीर के बाकी अंगों को भी सामान्य रूप से काम करने में मदद मिलती है। ज्यादा देर तक भूखा रहना आपकी पाचन क्रिया को खराब कर सकता है, इसलिए समय से ही नाश्ता कर लेना चाहिए। सही समय पर खाना खाने से पाचन क्रिया की कार्यक्षमता में भी सुधार होता है। बात करेंगे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं अगर आप सही समय पर नाश्ता करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सुबह का खाना हर किसी के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये दिन का पहला आहार है जिससे शरीर को सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसलिए नाश्ता करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। समय पर ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर चीजों का डाइट में शामिल कर रहे हैं। बात बीमारियों का खतरा कम होता है अगर आप सही समय पर नाश्ता करते हैं। शरीर में लगातार तेजी से बढ़ रही बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ खाने का सही समय पर मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। खासतौर पर सुबह का खाना सही समय पर ही करना चाहिए। कुछ अध्ययनों के जरिए बात सामने आई, सुबह के समय जल्दी नाश्ता करना हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों होने के खतरे को कम करता है। दिमागी स्वास्थ्य में सुधार। हमारे दिमागी स्वास्थ्य को हेल्दी बनाए रखने के लिए सही डाइट के साथ साथ खाना समय पर खाना बहुत जरूरी है। ज्यादा समय से भूख लगना हमारे शरीर में स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है और साथ ही इससे दिमागी स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। वहीं समय पर ब्रेकफास्ट करने से दिमाग को भी जल्दी पोषक मिलता है जिससे दिमाग के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। सही समय पर भूख लगती है, ये एक विषय है। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि यदि आप सुबह के समय लेट खाना खाते हैं तो आपको दोपहर में भी लेट भूख लगती है जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ठीक उसी प्रकार यदि आप सुबह के समय जल्दी खाना खा लेते हैं तो दोपहर में भी आपको समय पर भूख लगती है और ठीक उसी प्रकार आप रात का खाना भी टाइम से खा लेते हैं जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता है। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शादा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं पानी के विषय में। पानी शुद्ध पीना चाहिए। अगर आप पानी शुद्ध नहीं पीते हैं तो क्या क्या दिक्कतें परेशानियां आपके सामने हो सकती हैं, तो आज का जो विषय है पीने वाले पानी के बारे में जानना। जी हाँ, तो बात ये सामने आती है कि जब पानी और उसके घटकों को समझने की बात आती है तो आपको TDS को समझना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि TDS है क्या। TDS का मतलब टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड है और ये पीने के पानी में घुले हुए पदार्थों की कुल सांद्रता को दर्शाता है। TDS में अकार्बनिक लवण और थोड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ भी शामिल होते हैं। क्या 0 TDS का पानी पीना खराब है, ये एक विषय है, ये एक सवाल है। तो जानते हैं कि लंबे समय तक डीमिनरलाइज पानी यानी 0 TDS पानी पीने से इन आवश्यक खनिजों की कमी हो सकती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, मांसपेशियों में कमजोरी और अनियमित दिल की धड़कन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यदि पानी पीएच पैमाने पर 7 से नीचे है तो ये अम्लीय है, यदि ये 7 से अधिक है तो ये क्षारीय है। EPA दिशा निर्देश बताते हैं कि नल के पानी का पीएच 6.5 और 8.5 के बीच होना चाहिए। फिर भी अमेरिका में नल का पानी इससे नीचे 4.3 से 5.3 रेंज में इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं। बात करते हैं नींबू पानी के विषय में। नींबू का रस अपनी प्राकृतिक अवस्था में अम्लीय होता है। ये पीएच स्केल पर लगभग 3 है, यानी आपके नल का पानी लगभग 7 पीएच पर है। इसके कम पीएच के बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि नींबू पानी क्षारीय है। नींबू पानी अर्थात थोड़े से नींबू के रस वाला पानी क्षारीय नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर पर क्षारीय प्रभाव डालता है। नारियल के पानी की बात करते हैं। किसी उत्पाद का पीएच उत्पाद की अम्लता के स्तर का संकेत देता है और इसे 0 से 14 की इकाई पैमाने पर मापा जाता है। 7 का पीएच तटस्थ होता है। 7 से कम पीएच मान अम्लीय होते हैं। 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय होते हैं। नारियल पानी का पीएच 5 और 5.4 के बीच होता है और इसलिए ये थोड़ा अम्लीय होता है। 7 पीएच यानी 7 का पीएच तटस्थ होता है। 7 से ऊपर का पीएच क्षारीय होता है और 7 से नीचे का कोई भी चीज अम्लीय होता है। कौन से पेय क्षारीय है, ये एक विषय है। लोकप्रिय क्षारीय पेय में पानी, डेयरी, कुछ जूस, कुछ चाय और बादाम का दूध शामिल है। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं पानी के विषय में। कहते हैं कि जल है तो कल है, अगर जल नहीं होगा तो निश्चित तौर पर पानी के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई युद्ध होते हुए नजर आएंगे। और हम आसपास देखते हैं कि पानी जब हमें नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं। जरूरी है कि शुद्ध पानी पिए, क्योंकि शुद्ध पानी अगर आप पीते हैं तो वह आपकी हेल्थ के लिए मुफीद है। आज का विषय है वाटर प्यूरिफाइंग टिप्स। बात करते हैं, पानी जीवन का आधार है। स्वस्थ रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए, दूषित पानी आपको बीमार कर सकता है। आजकल पानी साफ करने के लिए लोग अपने घरों में आरओ लगवाते हैं। साफ पानी की जरूरत तो सभी को होती है, ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें घर पर पानी से सारे कीटाणु मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात उबाल कर, यानी कि पानी को उबाल कर कीटाणु रहित करने का तरीका सबसे आम है। अपने बड़े बुजुर्गों से भी हम सुनते आ रहे हैं कि पानी को उबाल कर पानी अच्छा होता है। पीने के पानी को किसी बड़े बर्तन में उबलने तक गर्म करें, लगभग 5 मिनट तक इसे ऐसे ही उबलने दें। उसके बाद पानी को ठंडा कर लें, इससे पानी के सारे कीटाणु मर जाएंगे और पानी पीने शुद्ध हो जाएगा। बात करते हैं फिटकरी से। फिटकरी से पीने के पानी को साफ करने का तरीका भी काफी आसान और सस्ता है। सबसे पहले फिटकरी को हाथ से धो लें, उसके बाद फिटकरी को पानी में घुमाएं। जैसे ही पानी हल्का सफेद दिखना शुरू हो, फिटकरी घुमाना तुरंत बंद कर दें। इससे पानी में गंदगी तले में बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लोरीन की। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि पानी को साफ करने के लिए आप क्लोरीन इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी साफ करने के लिए बाजार में क्लोरीन की गोलियां आती हैं। उन्हें पानी में डालकर उसे साफ किया जा सकता है। ध्यान रखें कि गोलियां डालने के बाद उस पानी को आधा घंटे तक इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करते हैं ब्लीच से। ब्लीच से पानी साफ करने के लिए ब्लीच में सोडियम हाइपोक्लोराइड भी होना चाहिए। ध्यान रहे इस ब्लीच में खुशबू, रंग या कोई अन्य चीज मिली हुई न हो। पानी को गर्म करने के बाद इस तरीके का इस्तेमाल करें। 1 लीटर पानी में ब्लीच की 2 से 3 बूंदें काफी रहती हैं। टमाटर और सेब के छिलके से, ये एक विषय है। इसके अंतर्गत बात सामने आती है, टमाटर और सेब के छिलके भी दूषित पानी को पीने लायक बनाने के लिए काफी कारगर है। टमाटर और सेब के छिलकों को करीब 2 घंटे तक अल्कोहल में डुबोकर रखें। इसके बाद इन्हें धूप में सुखाना होता है। सूखने के बाद इन छिलकों को दूषित पानी में डाल दें। कुछ घंटे बाद पानी की सारी गंदगी और अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। इसी के अंतर्गत एक और खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। विषय है कि

पेशाब करने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे में किडनी के नॉर्मल प्रोसेस को प्रभावित करता है। इससे किडनी में स्टोन और यूरिन इन्फेक्शन का खतरा होता है। मूत्र त्याग के तुरंत बाद पानी पीना सही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ब्लैडर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अब बात यह भी सामने आती है कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। अध्ययनों से पता चला है कि एक वयस्क व्यक्ति को शरीर को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से सुरक्षित रखने के लिए रोजाना कम से कम 2.7 लीटर पानी पीना चाहिए। ऐसा न करने से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है और कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो साधन 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि आप तक सही सही जानकारी पहुंचे और उस जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपनी खेती को उन्नत बनाएं और जो आपकी आमदनी है वो दुगनी चौगनी हो। इसीलिए सरकार आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके आती है, बहुत सी योजनाओं का आप लाभ भी ले रहे होंगे। लेकिन किसान मित्रों, आप अधिक आमदनी चाहते हैं तो आपको खेती के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। जी हाँ, किसान भाइयों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान भाई खेती के साथ ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में सरकार की ओर से किसान भाइयों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि आप मधुमक्खी पालन का व्यवसाय ठीक से कर सकें और फिर आपकी अच्छी खासी आमदनी भी होती रहे। तो हमारे जो भी किसान भाई खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा खासा पैसा वो कमा सकते हैं मधुमक्खी पालन करके। किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे जो किसान भाई हैं वो स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को अधिक बढ़ा सकते हैं और इसे ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं। अब बात आती है कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत कैसे की जाए, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं एक रागनी। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी और किस्सा रहेगा कृष्ण सुदामा का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

लग जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, एक विचार बना लिया कि घर वापस नहीं जाऊंगा, समाधि

0: तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से कृष्ण सुदामा के किस्से से ये रागनी। और आज हम बात कर रहे हैं खेत खलियान कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन की। बहुत सी बातें आपने मधुमक्खी पालन के बारे में सुनी, अब बात निकल के ये आती है कि इस काम की शुरुआत खेती के साथ साथ हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही दिमाग में बात आती है कि काम की शुरुआत तो करें, लेकिन इसमें कितना खर्चा होगा, कितना पैसा लगेगा। तो इसके लिए सरकार की जो ऋण योजना चल रही है उसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। यदि बात की जाए मधुमक्खी पालन पर आने वाले खर्चे की, यदि आप शुरू में 10 पेटी से मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी आपका मुनाफा भी बढ़ने लगेगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल ही गया कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। 10-15 पेटी से इसकी शुरुआत की जा सकती है और जो खर्चा होता है शुरुआत में वो 35,000 से 40,000 के बीच में होता है। अब आपको बता दें कि सरकार की ऋण योजना भी चल रही है, तो उस योजना का लाभ उठा करके भी आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन काम की शुरुआत कैसे करें? कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो उसकी जानकारी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अब ये जानकारी, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कहाँ से ली जाए? तो इसका सीधा रास्ता ये है कि आप अपने नजदीकी, जैसा कि हम हर कार्यक्रम में आपको बताते हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि केंद्र हैं, वहां जाकर के जो भी वैज्ञानिक हैं उनसे बात करिएगा कि मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण आपके यहाँ पर कब कब दिया जाता है और कैसे हम इसमें भाग ले सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। और भी बहुत सारी जानकारी इस व्यवसाय से जुड़ी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मधुमक्खी पालन व्यवसाय की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।
1: मेरा घड़ा तो थबा दे प्यारी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे हरीश चंद्र तारामती के किस्से से ये रागनी। कलाकार थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किसान मित्रों, खेती में पानी की खपत को कम करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। आपको पता ही है कि जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि जल का संकट बढ़ रहा है और किसानों के लिए कम पानी में अधिक खेती करना एक चुनौती बन चुका है। सही तकनीक और उपकरणों के इस्तेमाल से, जैसे एग्रीकल्चर स्प्रेयर मशीन, इससे हमारे किसान भाई अपनी खेती में पानी की बचत कर सकते हैं और अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। लेकिन आजकल आधुनिक तकनीकों के उपयोग से हमारे किसान मित्र कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकते हैं। पानी बचाने के लिए भी किसानों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। हमें समय के साथ कदम से कदम मिलाके आगे बढ़ना ही होगा। तो किसान मित्रों, आज के समय में जो सिंचाई की आधुनिक तकनीकी हैं, उनमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है और खेतों की सिंचाई की जा सकती है। इसके अलावा बारिश के पानी का संचयन करके सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। मल्चिंग तकनीक अपनाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही आधुनिक तकनीकों की, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं, साथ ही साथ पानी की बचत कर सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं। और अब किसान मित्रों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं बलराम बैसला और खस्सा रहेगा द्रौपदी चीर हरण का।

बलराम बैसला द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के कार्यक्रम खेत खलियान में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यापक कल्याणकारी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है। ये योजना COVID-19 महामारी के दौरान 2020 में शुरू की गई थी, लेकिन अब इसका मुख्य घटक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में चल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। प्रत्येक लाभार्थी को उसकी नियमित मासिक पात्रता के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं या चावल मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त मिलता है और इसी योजना का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, विशेषकर आर्थिक व्यवधानों के समय में। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं कोशिंदर खदाना और किस्सा रहेगा हीर रांझे का।

0: किसान मित्रों, अभी आप कोशिंदर खदाना से ये रागनी सुन रहे थे और किस्सा था हीर रांचे का। किसान मित्रों, खेती किसानी में आजकल नई नई तकनीकें आ गई हैं और इन तकनीकों का सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। ग्रीन हाउस खेती भी ऐसी ही एक तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से हमारे किसान भाई मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ये तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे होते हैं। इनमें सब्जियां सर्दियों में पाले और गर्मियों में तेज धूप से सुरक्षित रहती हैं। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से भी बचाया जा सकता है। वहीं ग्रीन हाउस में सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे हमारे किसान भाइयों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता। तो किसान मित्रों, आप भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके बेमौसम की फसलों को उगा करके अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही कृषि में उपयोग होने वाली आधुनिक तकनीकों के बारे में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।
1: ए रे

0: बता दिया कि आत्मा का बंदे ये जतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का
1: भजन कर ले।
0: अगर जीवन में अच्छा कार्य किया होगा तो भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। लेकिन जानते सबे बट उन चीजों को मानता कोई नहीं है।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये उपदेश। किसान मित्रों, कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना ही रहता है और इसका पूरा नुकसान आप किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से आपको बचाने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है, जो किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्यान्न फसलें जैसे अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन और वार्षिक, वाणिज्यिक या वार्षिक बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप किसी भी बैंक का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पास के बैंक में जाकर के एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर आपकी फसल का बीमा हो जाता है। अगर किसी किसान भाई के पास पहले से किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवाएं ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपकी फसल में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई यानी कि आपको वित्तीय सहायता दी जा सके। तो किसान भाइयों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती से एक रागनी, किस्सा रहेगा महाभारत का।

0: हस्तनापुर में दुर्योधन यदि ऐसा हो गया तो यह हस्तनापुर हस्तनापुर नहीं रहेगा।
1: ए दासी की औलाद, ये हस्तनापुर तो हस्तनापुर रहेगा, लेकिन याद रहे दासी पुत्र

0: ये मक्का या बाजरा रखाने वाला आदमी है, ये शोर मचाएगा। मैं खूंटा ठोकने वाला आदमी हूँ, तुम अपना काम करो जो हमने आदेश दिया है।
1: पीछे हट जा, तो साधन रोटी से पीछे हट जा।

0: महात्मा विदुर के गले पर छुरा क्यों नहीं चलाते?
1: नहीं दुशासन, ये सतीवीर पतिव्रता
0: जिभ्या करो जिभ्या।

0: बिल्कुल
1: क्या हुआ?
0: अरे यो ऋषि पाल का वैगा बिल्कुल, अरे नीति का तन ज्ञान नहीं।
2: ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

फिर क्या था सावित्री सोलह श्रृंगार करके और खान पीन का सामान रथ में धरवा के और सजीला रथ जुड़वा के दोस्तों चालन की तैयारी करती है तो उसकी सखेरी सखी सहेली चौकर देश से उसे घेर लेती है। भला कैसे सावित्री को कहती है, सावित्री इतना ख्याल करना कि वर ऐसा हो जो तेरी जोड़ी के काबिल हो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: क्यों, कैसे परेशान नजर आ रही हो?
1: मैं आज मैं बेहद परेशान हूँ। क्यों? कि मेरी जो लड़की है नहीं, बड़ी उर्मिला,
0: अच्छा,
1: ये शादी के योग हो गई और मुझे इसकी तमन्ना बहुत ज्यादा है। इसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए।
0: तो तुम कुछ कहना चाहती हो?
1: हाँ।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हिंदुस्तान की परंपरा यही रही है कि हिंदुस्तान में नारियों को पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब कहीं कहीं कोई घटना घट जाती है जहां नारी का अपमान होता है तो दिल बहुत दुखित होता है। सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं और बातें करते रहेंगे। यूं कहें कि कुछ खास बिंदुओं को हमने उठाया है और उस विषय पर हम बातें करेंगे। जैसे बेटियां हैं तो वंश है, प्रजनन अधिकार, इसके अंतर्गत बातें आती हैं भ्रूण हत्या, लिंग अनुपात, बेटे होने पर उत्सव और रिवाज। दूसरा विषय बालिका या वधु, इसके अंतर्गत बात आती है बचपन का हनन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। तीसरा विषय खतना, धर्म नहीं दर्द, इसके अंतर्गत बातें सामने आती हैं बाल उम्र में शारीरिक दर्द, रिवाज और विश्वास, कानूनी सलाह, पितृ सत्ता, असमान व्यवहार, असमान दिशा, बातें होंगी भेदभाव और समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, एक ऐसा विषय है माँ मुझे बाहर जाना है, इसके अंतर्गत बातें आती हैं कि घर और आस पड़ोस के दायरे, घर या घर के बाहर सवालिया सुरक्षा। विषय ये भी है कच्ची उम्र की शिक्षा, यानी बदलती शारीरिक संरचना और किशोरावस्था में अपराधी मानसिकता से बचने हेतु सीखने योग्य बातें, कैसे बचे मनचलों से, बातें होंगी इंटरनेट का जाल, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, ब्लैकमेल, रिश्तेदारों द्वारा छेड़खानी और चुप्पी, ये बातें होंगी कैसे बचे मनचलों के अंतर्गत। दहेज प्रथा या हत्या, इसके अंतर्गत बात सामने आती है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, सामाजिक हैसियत का दिखावा। अगला विषय मेरी पत्नी मेरा अधिकार, यानी वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार, ये कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी थीम है जिसके अंतर्गत हम बातें आपके सामने लेकर आएंगे एक रिसर्च के माध्यम से। सुनो शारदा 90.8 FM ने हाथ मिलाया है रेडियो अमेठी के साथ और रेडियो अमेठी ने हाथ मिलाया है हमारे साथ, यानी सुनो शारदा 90.8 FM के साथ एक समझौते के तहत एक दूसरे के कार्यक्रम हम यहां से प्रसारित कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम वो अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो रेडियो अमेठी का धन्यवाद करते हुए आइए सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये खास कार्यक्रम।

0: खास कार्यक्रम हिंसा को नो, जिसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न जैसी कुरीतियों को समाज से दूर हटाना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। मैं बोल रही हूँ श्रेया और आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे शो पे जिसका नाम है जागरूक करना। मैं बोल रही हूँ श्रेया और आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे शो पे जिसका नाम है हिंसा को नो। दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में जेंडर आधारित हिंसा के बारे में बातचीत की थी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आर्थिक हिंसा के ऊपर। आर्थिक हिंसा का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। जैसे कि पुश्तैनी संपत्ति और पैसों से जुड़े अधिकार न देना, भोजन, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से वंचित रखना, महिलाओं को काम करने से रोकना, खर्च किए गए पैसों का उत्तेजित होकर हिसाब मांगना, दहेज की मांग मुफ्त में, सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों द्वारा पैसों से संबंधित उत्पीड़न करना आदि। आइए अब हम इस विषय में चर्चा करते हैं हमारी कम्युनिटी मेंबर विनीता जी से। विनीता जी हरियाणा के पास से नोएडा सेक्टर 125 से आती हैं। वहाँ एक प्राइवेट संस्थान में काम करती है, तो चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। विनीता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई महिला अपने पति पे आर्थिक रूप से डिपेंडेंट है तो महिला को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है?
1: हाय श्रेया, हाँ, जैसे आप पूछ रहे हैं कि महिला अपने पति पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो वो किन परेशानियों का सामना करती है, इसका काफ़ी परेशानियां हैं जो एक महिला को सहनी पड़ सकती हैं। मान लीजिए वो पूरी तरह फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अगर अपने हस्बैंड पे, तो वो हर एक चीज़ के लिए, कहते हैं ना, पाई पाई के लिए मोहताज भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि यू नो वो आपका जो हस्बैंड है या पति है वो फुल सपोर्ट करते हैं, वो आपको वो सपोर्टिव हों, यू नो हर एक छोटी चीज़ के लिए उनको हाथ फैलाना पड़ सकता है। यू नो घर चलाने के लिए 100 चीज़ें एक घरेलू महिला को देखनी होती हैं, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए उनको वापस बार बार जाना पड़ता है। एक घर चलाने के लिए ना, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी घर चलाती हूँ, तो 10 हर एक तरह का खर्चा होता है, बच्चों की पढ़ाई है, राशन है और भी खर्चे होते हैं, तो इन सब चीजों को वो कैसे चलाएगी, कैसे अपनी गृहस्थी समेट के चलाएगी, वो खर्चा कैसे करेगी, तो अगर वो फुली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो उस महिला के लिए काफी दिक्कत है। कभी कभी क्या होता है, यही क्योंकि आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं अपने पति पे, तो ये घरेलू हिंसा का भी एक कारण बन जाता है इनडायरेक्टली। मान लीजिए आपके हस्बैंड, आपका पति सपोर्टिव नहीं है, वो नहीं देते आपको पैसे, आप कैसे चलाएंगी, बार बार लड़ाई झगड़ा, तो ये एक बहुत ही सोशल इशू है, मेजर इशू है, जिसमें आपका पति हिंसा पे भी उतर सकता है, उतारू हो सकता है ना, और फिर वो आपके बच्चे भी उसको देखते हैं, तो बच्चों पे एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तो ये सोसाइटी, इट्स अ वेरी, ये काफी एक बड़ा मुद्दा है आजकल की महिलाओं की लाइफ में कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए।
0: इसका क्या समाधान निकाल सकते हैं, कैसे इन परेशानियों से बाहर निकल सकती है महिला?
1: देखिए, मुझे क्या लगता है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना तो एक बहुत अच्छी बात है। जैसे हम कहते हैं कि हम सब लोगों को कहते हैं, सब लड़कियों को, कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाइए, इंडिपेंडेंट हो जाइए, मगर कैसे हो जाइए, हमें ही वो कदम उठाने पड़ेंगे उन लड़कियों के लिए। सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, जागरूकता, कि कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे, और वो कैसे आएगी, जब तक वो लड़की शिक्षित नहीं होगी। सो सबसे जो अहम मुद्दा है वो है लड़कियों की शिक्षा का मुद्दा, उनको आपको पढ़ाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, और पढ़ाने से ही कुछ नहीं होगा, उनको पढ़ाने ये भी समझाना पड़ेगा कि आप जो अपने खर्चे हैं, अगर आप मान लीजिए कुछ पैसा कमा रही हैं, तो उसको आपको कैसे, उसको साथ में लेके चलना है, उस परिवार को साथ में लेके कैसे चलना है। सिर्फ पैसा कमाना ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती, उस पैसे से आप आगे कैसे उसको राउट करते हैं अपनी गृहस्थी में, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं उसका, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो शिक्षा तो सबसे अहम है लड़कियों के लिए। आजकल भी हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं हम लोग, कि कई कई जगहों पे लड़कियों को मना कर दिया जाता है शिक्षा के लिए, स्कूल नहीं भेजा जाता है। आप दूर की बात क्यों लेते हैं, आसपास के, दिल्ली के आसपास में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे कुछ

0: काफ़ी बदलाव आएगा। सो मेन मुझे क्या लगता है, शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है, गर्ल एजुकेशन जिसको बड़ा एक मुद्दा मानना है, सरकार भी काफ़ी इस पर कर रही है काम, तो मेन है एजुकेशन लड़कियों का और अवेयरनेस। एजुकेशन के साथ साथ अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ाने लिखाने से श्रेया इसका समाधान नहीं है, उसमें अवेयरनेस आपका थोड़ा और इनपुट, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का, जो हम जैसी महिलाएं हैं, जो हम समझ सकती हैं दूसरों पे क्या बीत रही है या क्या बीत सकती है, तो उनका सहयोग ऐसी महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है,
1: ताकि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सके,
0: उन्हें समझ आ सके कि कैसे करना है,
1: घर को चलाना
0: है,
1: खुद के लिए खड़ी हो सके
0: है ना,
1: दूसरों के सामने हाथ फैलाने की बजाय खुद कुछ करके दिखाए, खुद कमाए, जैसे कि आप इस वक्त कर रही हैं, एक वर्किंग वुमेन है, ठीक है, ऑफिस में काम करती हैं, सच में बहुत अच्छा कर रही हैं, और
0: थैंक यू
1: जी।
0: नहीं, ये तो है ही, आपको ना, ये हमें हमारी, मुझे ऐसा लगता है ये हमारी एक सोशल ऑब्लिगेशन है सोसाइटी के लिए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या कोई और भी यहाँ पे जो महिलाएं काम कर रही हैं, दे हैव टू एनकरेज अदर वुमेन कि यू नो आप प्लीज आगे बढ़िए और करिए ये सब, तो आप ही के फायदे के लिए, आप ही के हित में है ये।
1: बिल्कुल, जैसे कि अगर कोई महिला इंडिपेंडेंट होती है तो उसमें अलग सा कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, क्या उन्हें भी किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है?
0: हाँ, देखिए पहली बात तो कॉन्फिडेंस तो आता ही है जब आप खुद ही, जैसे कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनते हैं, तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि यू नो मैं कमा रही हूँ, हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, वो आपको उस महिला को या चलिए उस इंसान को देख के एक आपको एक फील आ जाता है कि हाँ वो आत्मनिर्भर है, वो कर सकते हैं, वो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अकेले इन परेशानियों का सामना कर सकती हूँ या झेल सकती हूँ, अगर कोई बहुत ही यू नो विपरीत परिस्थिति है तो आदमी फिर भी खड़ा हो जाता है या औरत फिर भी खड़ी हो जाती है कि हाँ इसमें सिचुएशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपकी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मान लीजिए आपके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, यू नो कई आपको घरेलू हिंसा, फिर से इसमें एक मुद्दा आता है कि अगर आपके किसी गृहस्थी में उसका पति जैसे अगर शराब पी के आ रहे हैं ना, तो वो घरेलू हिंसा पे रिजल्ट करती है, तो उसके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का भी क्या फायदा कि अगर वो उसी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। तो
1: कभी कभार मैंने ऐसे भी देखा है कि पति कमाते नहीं है, सिर्फ पत्नी कमाती है, तो फिर वो दारू पी के आते हैं और मारपीट करते हैं अपनी पत्नी के साथ, उनसे पैसे छीन लेते हैं ताकि वो अपने दारू का खर्चा चला सके
0: या अपने खर्चे
1: अपने खाने पीने के लिए।
0: हाँ जी, तो ऐसे में वही बात है कि यू नो अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है लड़की को। जो मैं बार बार ये कह रही हूँ एज अ गर्ल चाइल्ड, एज अ यू नो एज अ मदर, मैं कहना चाहती हूँ कि अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस कि हमें आत्मनिर्भर कैसे बनना है, ये परिस्थितियां क्या है जिंदगी में, परिस्थितियां जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो बता के तो आती नहीं है, तो उस समय आप कैसे खड़े हो जाएंगे और कैसे उनको वो करेंगे, अब फेस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
1: जी जी जी, आइए अब वक्त हो चला है कहानी का। इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे दहेज प्रथा के बारे में और इसके द्वारा ये भी जानेंगे कि दहेज का लोगों पर किस प्रकार असर पड़ता है। सेठ मदनलाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से उनके घर लक्ष्मी जी धन वर्षा करती थी। सेठ मदनलाल की एक सुंदर सुशील और शिक्षित बेटी थी जिसका नाम था कल्पना। कल्पना अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी भरपूर मिलता था उसको। सेठ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता न थी, किंतु कहते हैं ना, जिसके घर बेटी जन्म लेती है उस घर माँ बाप को चिंता होने लगती है। कल्पना पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई। माँ बाप को कल्पना की शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाते के लोगों को लगाया गया। काफी तलाश के बाद 2.5 साल के बाद एक योग्य वर ब्रजपाल की तलाश हुई। ब्रजपाल चौधरी सत्येंद्र का पुत्र था, नाम से ही पता चलता था कि चौधरी सत्येंद्र धन से भी चौधरी है। सेठ मदनलाल ने चौधरी सत्येंद्र से अपने पुत्री

0: कल्पना के लिए ब्रजपाल से ब्याह कराने की बात की। चौधरी सत्येंद्र ने कल्पना से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन सेठ को दिया। चौधरी जानता था सेठ की कोई और संतान नहीं है, कल्पना उसकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र 50 साल से ऊपर है, अर्थात अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दिया। लग्न मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया गया। सेठ मदनलाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए सेठ धन का लोभ नहीं करते थे। वह जी खोल कर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे, अर्थात खर्चा कर रहे थे। चौधरी सत्येंद्र भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य से ज्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। कल्पना और ब्रजपाल का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। कल्पना भी अपने ससुराल में खुश थी। ससुराल वाले भी कल्पना के स्वभाव से प्रसन्न थे। कल्पना के स्वभाव से रिश्तेदारों में भी कोई नाराजगी नहीं थी। सभी कल्पना के स्वभाव की तारीफ करते कहते थे, इस जैसी बहू मिलना मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीत जाने के बाद सेठ मदनलाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात कल्पना को एक भाई मिल गया जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। सेठ के घर खुशियों की छड़ी लग गई। बेटी का विवाह हुआ, अच्छा घर मिल गया, इसकी तो अपार खुशी थी ही, किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई और वह खुशी को दोगुना करने वाली बात थी। सेठ मदनलाल के घर पुत्र का जन्म सुनकर कल्पना के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनकी सारी संपत्ति छिन गई हो। उन्होंने शादी इस लालच में की थी कि वह मदनलाल के सारे संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटे के जन्म के बाद यह मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से कल्पना के जीवन में खुशी आनी चाहिए थी, किंतु ये उसके लिए दुख का कारण बन गया। सास ससुर पति सभी अब कल्पना को दुख देने लगे थे और उसे प्रताड़ित करने लगे थे। दहेज और धन के लालच में कल्पना को मारते पीटते और दिन भर भूखा रखते थे। हर दिन एक नई डिमांड रखी जाती, कभी उसके मायके से एसी मंगवाते तो कभी कार। कल्पना को जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे भी नहीं देते थे। उसके ससुराल वालों ने उसे पैसों के लिए तरसा दिया था। जो लड़की अपने मायके में राज करती थी उसे माँ बाप पलकों पे बिठा के रखते थे, वहीं अब ससुराल वाले उस पर अत्याचार कर रहे थे। बेचारी वहाँ रहकर तिल तिल मर रही थी, किंतु कल्पना के आदर्श इतने ऊँचे थे, उसने अपने माता पिता को इस यातना और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। सेठ कल्पना से मिलने और अपने बेटे की छठी अर्थात नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी ससुराल पहुँचे। चौधरी और ब्रजपाल सेठ को देखकर असमंजस में पड़ गए कि वह कल्पना से कैसे मिलवाएंगे। सेठ सभी घटना को जान जाएगा और हमारे विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। तत्काल उन्होंने निष्कर्ष निकाला और कल्पना को समझाया, किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अनेकों प्रकार की धमकियां देकर कल्पना को उसके पिता से मिलवाया गया। बेटी भी कर्तव्यनिष्ठ थी, उसके संस्कार पुराने थे, इसी आदर्शों से वह बंधी हुई थी। कल्पना ने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया। बैठे बैठे अनायास उसके आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले बेटी बोलती है, पिताजी ये मेरे खुशियों के आंसू हैं। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी, अब जाकर मुझे एक भाई मिला है जिसके कलाई पर मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए। पिता को ये बात समझ नहीं आई, कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों को कुरेदा नहीं। सेठ नामकरण संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर वापस लौट आए। ब्रजपाल ने कल्पना को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम अपने पिता से जायदाद में आधा हिस्सा मांगो, घर में पैसे लेकर आओगी तभी इस घर में रह पाओगी, अगर नहीं लेकर आई तो अपनी शक्ल इस घर में दिखाना भी मत। कल्पना रोती रोती अपने मायके पहुंच गई, जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताई। मदन लाल ने कल्पना के ससुराल वालों को बुलाने का फैसला कर लिया। जब सभी आए, चौधरी सत्येंद्र के चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही थी। उसे लग रहा था कि फैसला उनके हक में होगा, लेकिन जरूरी नहीं जैसा सोचा है वैसा ही हो। सेठ मदन लाल बोला कि वो अपनी आधी संपत्ति कल्पना के नाम कर देगा, क्योंकि ये उसका अधिकार है। बेटा हो या बेटी, दोनों को बराबर हक मिलेगा। मदन लाल ने फिर अपनी बेटी को समझाया कि मारपीट सहना गलत बात है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि चुप रहकर सब कुछ सहते जाना है। संस्कारों की बात अलग है, वे अपनी जगह हैं, लेकिन जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने में ही भलाई है। फिर कल्पना से पूछा गया कि वो आगे क्या करना चाहती है। कल्पना का कहना था कि जिस रिश्ते में सम्मान नहीं हो, वो उस रिश्ते को आगे नहीं निभा सकती। चाहे वो अकेली जिएगी, लेकिन पूरे आत्मसम्मान के साथ। फिर क्या हुआ, जानना चाहते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। कल्पना ने अपना अलग घर बसा लिया, अपने पिता से उसको आर्थिक मदद मिली। अब कल्पना का खुद का बुटीक है, जहाँ वो औरतों को सिलाई बुनाई का काम सिखाती है, और साथ में ये भी सीख देती है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना ये भी एक संस्कार है। दूसरी ओर ब्रिजपाल और उसके घर वालों को मारने पीटने के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब वे लोग पुलिस की हिरासत में हैं। चलिए दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हो चला है। मुझे दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो अमेटी 107.8 FM। हमने अपने आज के एपिसोड में आर्थिक हिंसा के बारे में जाना, लेकिन अभी एक और चीज जानना बाकी है, और वो है कानून। कानून क्या कहता है, आइए जानते हैं।
1: जी नमस्कार, मैं हूँ सुमित्रा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एट अमेठी लॉ स्कूल नोएडा और लीगल अवेयरनेस एंड लिटरेसी कमेटी की को कन्वीनर। तो आज हम बात कर रहे हैं राइट ऑफ वुमेन टुवर्ड्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले बताना चाहूंगी, आजादी से पहले की अगर हम बात करें हमारे देश में, तो मिताक्षरा लॉ और दयाभागा लॉ को ही कंसिडर किया जाता था राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर। इसके बाद बात करेंगे हम वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, तो उस समय एक बहुत ही पेट्रियार्कल सेटअप था, और ये माना जाता था 1937 से पहले कि विमेन को प्रॉपर्टी में राइट जरूर होगा, लेकिन हर राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज क्वालिफाइड बट कंसिडर्ड बाय द पेट्रियार्कल सेटअप एज नेसेसरी लेस्ट शी बिकेम टू इंडिपेंडेंट एंड निग्लेक्ट हर मैरिटल ड्यूटीज एंड द मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड अफेयर्स। का मतलब ये है कि आप एक पेट्रियार्कल सेटअप में रह रही थी और उसमें आप अपनी मैरिटल ड्यूटीज और जो हाउस होल्ड अफेयर्स है अगर उसको निग्लेक्ट करके आप राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो उसको एक अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। और तब उनको राइट टू शी कुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मिलती थी, लेकिन क्लॉज यही था कि आपको जो है अपनी मैरिटल ड्यूटीज और हाउस होल्ड अफेयर्स को नहीं छोड़ना है। ये तो सिचुएशन हो गई, जैसा मैंने आपको बताया, आजादी से पहले 1937 से भी पहले। इसके बाद एक लॉ आया जिसे हम कहते हैं हिंदू विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1937। उस एक्ट को भी इसलिए लाया गया क्योंकि एक जो समाज का एक वर्ग था वो काफी अनसैटिस्फैक्टरी था महिलाओं की राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर। अब इस लॉ में भी ये लॉ जो था ये भी विडोज को ज्यादा कंसिडर करता था और कहता था कि इस एक्ट में अ विडो वाज एंटाइटल्ड टू अ लिमिटेड इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड। कोई विडो होती है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर उनका एक लिमिटेड हक होता था और इसको कहा जाता था हिंदू विडोज एस्टेट। अब इस एक्ट को अमेंड किया गया था 1938 में टू एक्सक्लूड द विडो फ्रॉम एनी इंटरेस्ट इन द एग्रीकल्चरल लैंड। अब इसके बाद जो एक्ट आया राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, वो हम ज्यादातर जो पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, वो होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ द ईयर 1956 को लेकर। वो एक पहला लॉ ऐसा बना था जिसने एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम प्रोवाइड किया था इनहेरिटेंस को लेकर हिंदूज में, जैन्स में, सिखों में और बुद्धिज्म में, और वो जेंडर इनइक्वालिटी को हटाता था इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जो एक्ट था ये एक एब्सोल्यूट राइट कॉन्फर करता है, इंक्लूडिंग द अनफेटर्ड राइट्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज एक्वायर्ड बाय इनहेरिटेंस, डिमाइस, पार्टीशन इन लियू ऑफ मेंटेनेंस, एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस, गिफ्ट, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द वुमेन हरसेल्फ, परचेज या प्रिस्क्रिप्शन या किसी भी मैनर में, या स्त्री धन जो कि इंक्लूड करता है ऑर्नामेंट्स, एपरल्स, गिफ्ट्स या कुछ भी जो वेडिंग में रिसीव की गई हो। अब यही यही एक्ट जो था इसको अमेंड किया गया 2005 में। तो अब इसे कहा जाता है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसका कि सेक्शन 6 बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2005 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और ये डिक्लेयर किया दैट इंडियन वुमन वुड हैव एन इक्वल राइट टू अ शेयर इन प्रॉपर्टी एज मेन, ग्रांटिंग डॉटर्स द राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद द मेल रिलेटिव्स। तो इस एक्ट के अंतर्गत मेल और फीमेल इनहेरिटर, ये जो वर्ड है द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल एंड द मेल इनहेरिटर हैज बीन अबॉलिश्ड। ओके, नाउ इवन द फीमेल इनहेरिटर द डॉटर शी कैन क्लेम द पार्टीशन ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब जो सेक्शन 6 है ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2005, इट प्रोवाइड्स फॉर पैरिटी ऑफ राइट्स इन द को पार्सनरी प्रॉपर्टी, यानी कि हम वारिस होंगे अमंग द मेल एंड द फीमेल मेंबर्स ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। जो डॉटर है वो एंटाइटल्ड है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपने हम वारिस बनने के लिए। द डॉटर इज एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड इज अ को पार्सनर एज इफ शी हैड बीन अ सन। कहने का मतलब ये है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटे और बेटियों का समान अधिकार है। इसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं जो एक्सेप्शंस हैं टू विच न्यू सेक्शन 6 इज नॉट एप्लीकेबल, जैसे कि वेयर द डिस्पोजिशन और एलिनेशन इंक्लूडिंग एनी पार्टीशन which took place before 20th 12 2004 तक अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं की गई है या एलिनेट कर दी गई हो, और दूसरा ये वेयर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज मेड बिफोर 2012 2004। अपने लिसनर्स को थोड़ी जानकारी और देना चाहूंगी कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान 50 के दशक में लागू हुआ था। सो व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स दैट टाइम द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज गिवन अ फंडामेंटल स्टेटस। उसमें बेसिकली दो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, जो इंश्योर करता था दैट एनी पर्सन्स राइट अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी रिमेन्स प्रोटेक्टेड। लेकिन इसके बाद बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1978 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक नया आर्टिकल 300A इंसर्ट किया गया, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को इस तरीके से डिफाइन किया। इट सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज property save by the authority of law. This article provides restrictions on the state that it cannot take anybody's property without the force of law. Also interpreted can be deprived of the force of the law. The word law here means a validity enacted law which is just, fair and reasonable. So, चलिए और अगले एपिसोड में हम और भी इसके बारे में widely discuss करेंगे. Thank you so much.
0: मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम हिंसा को नो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आप लोग इसे अपने समुदाय के साथ भी साझा करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।
2: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। जिस विषय पर आज बात हुई, ऐसे तमाम विषय समय दर समय हम उठाते रहेंगे और आपके बीच लाते रहेंगे। इन खास जानकारियों को सुनना न भूलें। साथ ही साथ हम धन्यवाद कहना चाहेंगे रेडियो अमेठी का, जिसने हमें ये सहयोग दिया और ये सहयोग हम भी ऐसे ही दूसरे स्टेशनों को समय दर समय दे रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे खास कार्यक्रम अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो ये खास जानकारी आपको कैसी लगी, 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
2: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
3: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज़ वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
2: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
1: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर

सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: भाभी लो मिठाई खाओ।
1: अरे किस खुशी में?
0: ओ, सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
1: वाह, तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
0: ओहो भाभी, रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
1: अनीमिया?
2: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: ललिता लो मिठाई खाओ।
0: अरे वाह, रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
3: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी महासागर वातावरण का आपसी तालमेल और जीवन। पिछली कड़ी में आपने सुना सूरज की ऊर्जा ने धरती पर जीवन संजोने में एक अहम भूमिका निभाई है, पर इस निरंतर चलते जीवन को धरती पर मौजूद महासागरों एवं वातावरण ने भी अपनी प्यार भरी थपकियां दी। तो आइए सुनते हैं महासागर वातावरण का आपसी तालमेल।

0: तारे जमीन, अरे हमारे तारे कहाँ गए? वसुधा
1: जी,
0: अरे ये मानव और सृष्टि उठे कि नहीं अभी तक, और विवेक स्टेशन पहुंचा कि नहीं?
1: देखती हूँ। मानव सृष्टि, मानव उठो, चलो उठो सृष्टि।
2: क्या मम्मी, संडे के दिन तो सोने दो।
3: हाँ मम्मा, पापा भी कितनी जोर से चिल्लाते हैं।
1: अरे चिल्लाएंगे नहीं बेवकूफो, सूरज आसमान पर चढ़ गया और तुम दोनों उठते ही नहीं हो। चलो उठो, ब्रश वगैरह करो, उठो।
3: अरे मम्मी, ये विवेक भैया कहाँ गए?
1: अरे तुम्हारे पापा के कॉलेज के दोनों के दोस्त डॉक्टर ब्रजमोहन और उनकी पत्नी डॉक्टर अल्पना और उनके एक और सहपाठी डॉक्टर शमसुल इस्लाम आ रहे हैं आज।
4: डॉक्टर शमसुल इस्लाम?
1: हाँ।
4: यानी कि इस्लाम अंकल? जो मुझे बहुत डांटे थे। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर?
1: मानव ऐसे नहीं बोलते बेटा, तब तुम बहुत छोटे थे और इस्लाम भाई साहब को बहुत तंग करते थे, अब तो तुम काफी शरीफ हो गए हो ना।
3: ये और शरीफ? अरे मम्मी, इस्लाम अंकल पहले तो सिर्फ डांटते थे, अब तो ये शरीफ मानव पिटने के लायक है।
4: पिटने के लायक है? पर मम्मी, ये सब यहाँ पर आ क्यों रहे हैं?
0: मानव, मानव और सृष्टि, फटाफट तैयार हो जाओ। अरे भाई, ये तीनों हमारे देश के जाने माने समुद्र और मौसम विज्ञानी हैं। पता है, डॉक्टर इस्लाम तो 3 बार एंटार्क्टिका जा चुके हैं।
4: बहुत अच्छी बात है पापा, लेकिन ये हमारे घर क्यों आ रहे हैं?
1: चुप मानव, अगर दोबारा ऐसा बोला ना तो बहुत पिटाई होगी।
4: लेकिन
1: घर पर मेहमान आ रहे हैं तो खुश होना चाहिए ना बेटा, बार बार एक ही रट लगा रखी है, क्यों आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं। अब चुपचाप जाकर नहाओ, चलो।
3: वाह वाह मम्मी, मानव की सुबह का डांट से श्री गणेश।
0: अरे मानव बेटा, दिल्ली में डॉक्टर ब्रज, डॉक्टर अल्पना और डॉक्टर इस्लाम का समुद्र और वातावरण विषय पर लेक्चर है। अब सभागार यहाँ से पास है तो मैंने गेस्ट हाउस में रुकने को मना कर दिया। अब ये तीनों हमारे साथ करीब 1 हफ्ता रहेंगे।
4: इस्लाम अंकल भी 1 हफ्ता रहेंगे?
3: और क्या, और पूरे 1 हफ्ते तुझे डांट पड़ने वाली है।
4: तुम तो यही चाहते हो कि मुझे डांट पड़े।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। पिछली बार जब डॉक्टर इस्लाम आए थे तो एक तो तुम सिर्फ 4 साल के थे और बेचारा शमसुल भी अपने अंटार्कटिका मिशन को लेकर कुछ परेशान था।
3: अरे पापा, इस मानव ने इस्लाम अंकल के सारे कागज और चिट्ठियों पर भी तो रंगों से ड्राइंग बना डाली थी।
0: तभी तो डांटा था इस्लाम ने। बेचारा मानव डॉक्टर इस्लाम के शोध पत्रों पर ड्राइंग बनाकर उसे ही दिखाने चला गया था।
4: मुझे डांट पड़ी और आप सब हंस रहे हो।
1: अरे मानव, क्यों दुखी होता है रे? तेरे इस्लाम अंकल तुम सबको इतना प्यार भी तो करते हैं ना।
0: Exactly.
1: तेरे लिए डांट के बाद खिलौने भी तो लाए थे, याद है ना?
3: और वो भी इसने उनके सामने ही बराबर कर डाले थे।
0: वैसे मेरे ये तीनों दोस्त तुम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। पता है, डॉक्टर इस्लाम तो खुद ही हमारे यहाँ रुकना चाह रहे थे और तुम्हारे बारे में तो वो पूछ भी रहे थे मानव।
4: बाप रे, अगर उन्हें मैं अभी तक याद हूँ तो मैं जल्दी से नहा धोकर अच्छी तरह से तैयार हो जाता हूँ।
1: जल्दी जाओ। चलो, इस्लाम भाई साहब के डर से संडे को सुबह सुबह नहाने तो गया मानव।
0: सही बात है, उनको यही रोक के रखना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: लो, अब लगता है आ गए। मानव, मानव जरा दरवाजा तो खोलना।
1: अरे आप भी किसे आवाज लगा रहे हैं? मानव बेचारा तो इस्लाम भाई साहब के डर से पहले ही अपने कमरे में चुपचाप किताब खोलकर बैठ गया है।
0: अच्छा ठीक है, चलो मैं ही जाकर दरवाजा खोलता
1: हूँ।
0: अरे आओ आओ ब्रज, इस्लाम, अल्पना, कैसे हो तुम सब? बिल्कुल ठीक।
1: नमस्कार। नमस्कार।
0: हाँ बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक।
5: भाई बहुत वर्षों बाद मिलना हो रहा है। नमस्ते भाभी।
1: नमस्कार भाई साहब।
5: ये मेरी पत्नी और सहयोगी डॉक्टर अल्पना है।
1: नमस्ते भाभी जी।
4: नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते। और भाई इस्लाम, और बताओ कैसा चल रहा
6: है? हम तो ठीक है, आप सुनाओ कैसे?
0: हाँ सब खैर।
6: भैया तुम्हारा विवेक भैया तो बहुत समझदार है ना, 100 रुपए मांग रहा था, सीधे 40 करा दिए।
0: अच्छा, मुझसे तो 40 के 100 ले लेता। वैसे भाई डॉक्टर इस्लाम, अब इसका नाम विवेक ऐसे ही थोड़े ही रखा है। विवेक कौन है?
1: आइए ना आप लोग, नाश्ता तैयार है?
0: नाश्ता तैयार।
1: नाश्ता तैयार है।
0: लिए आप लोग लीजिए ना, सब लोग
7: खाना
1: अच्छा लगा भाई साहब।
6: हाँ तो भाई सृष्टि बेटे कैसी हो?
8: मैं ठीक हूँ अंकल।
6: हाँ ठीक हो? अरे आज सूर्य प्रकाश, तुम्हारा वो शैतान बेटा क्या नाम है उसका? हाँ मानव। अरे भाई वो मानव दिखाई नहीं दे रहा।
8: मानव कहाँ है? मानव मानव मानव देखो इस्लाम अंकल बुला रहे हैं तुम्हें।
0: अब ना है।
8: अंकल अंकल मानव आपकी 5 साल पहले की डांट अभी तक नहीं भूला।
6: बिल्कुल सही। चलो तो भाई मैं ही बुला लेता हूँ। मानव, अरे मानव कहाँ हो?
0: लो आ गया मानव।
8: नमस्ते अंकल।
6: नमस्ते नमस्ते।
8: नमस्ते आंटी।
1: नमस्ते बेटा।
6: भाई मानव बहुत बड़ा हो गया। अरे इधर आओ।
8: जी अंकल।
6: क्यों बच्चे कैसे हो?
8: मैं ठीक हूँ।
6: हाँ भाई तो कौन से क्लास में आ गए?
8: मैं 4th class में।
1: अरे वाह मानव तो वाकई बड़ा हो गया।
9: अंकल आपका लेक्चर समुद्र और वातावरण विषय पर है ना?
10: हाँ विवेक, मैं और अल्पना वातावरण पर बोलेंगे और डॉक्टर इस्लाम महासागरों और समुद्रों तथा वातावरण के आपसी तालमेल पर बताएंगे।
8: अंकल महासागर और वातावरण का आपस में क्या तालमेल है?
6: अरे वाह मानव लगता है हमारा लेक्चर तो अभी से शुरू। क्यों है?
1: बेटा पहले नाश्ता कर ले फिर तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देंगे। हाँ, ठीक है
0: जी। चाय
10: और हाँ जब तक हम हैं तब तक मानव को रोज कम से कम 4 सवाल जरूर पूछने होंगे। ठीक है मानव?
8: जी अंकल।
6: भाई चलो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, तब तक मानव तुम कुछ सवाल सोचते रहो। क्यों मानव?
8: जी
0: थोड़ा शुगर पास करना है।
1: सादा अचार मत खाओ बेटा।
8: हाँ अंकल आप बता रहे थे कि महासागर सागर वातावरण और भूमि का आपसी तालमेल है।
6: हाँ बेटे सृष्टि, चलो मैं तुम्हें से पूछता हूँ कि धरती की 3 मुख्य प्रणालियाँ कौन सी हैं?
8: प्रणालियाँ क्या मतलब अंकल?
10: बेटे मानव हमारा प्रणाली से मतलब है वो मुख्य तंत्र या सिस्टम जो इस धरती पर जीवन बनाने तथा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है।
8: ब्रज अंकल जीवन के लिए आवश्यक है हवा पानी और खाना यानी भोजन है ना? बिल्कुल ठीक कहा दीदी, इन 3 के बिना खास करके भोजन के बिना तो जीवन होगा ही नहीं।
1: सृष्टि बेटे तुमने एक आम व्यक्ति के रूप में बिल्कुल ठीक कहा, पर अगर हम वैज्ञानिक रूप से धरती के बदलते मौसम जलवायु पेड़ पौधे पर्यावरण तापमान आदि का एक भौतिक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं तो हम थोड़ा और बड़े और व्यापक स्तर पर जाते हैं।
9: आंटी मेरे हिसाब से धरती के 3 मुख्य तंत्र होंगे, भूमि महासागर और वातावरण।
0: वेरी गुड, वेरी गुड।
6: बिल्कुल सही। देखो सृष्टि और मानव जो तुमने कहा वो भी ठीक था, पर विवेक ने इसे एक बड़ी प्रणाली समझते हुए हवा को वातावरण पानी को महासागर तथा आवास एवं खाने को भूमि का हिस्सा बना दिया।
1: विवेक तुमने बिल्कुल ठीक सोचा, हालांकि आवास एवं भोजन हमें पानी में भी उपलब्ध है इसलिए भूमि की यहाँ एक नई भूमिका हो जाती है।
8: कैसी भूमिका आंटी?
10: समझाते हैं, पर मानव अपने सवाल भी सोचते रहना अच्छा?
8: जी।
6: देखो जैसा विवेक और डॉक्टर अल्पना ने बताया भूमि महासागर तथा समुद्र इसी धरती के 3 मुख्य तंत्र हैं और इन्हीं तंत्रों का आपसी तालमेल हमें नए नए मौसम खाद्य पदार्थ तथा जीवन देता है।
10: यानी हम पूरी धरती को अलग अलग तंत्रों की एक ऐसी अनूठी प्रणाली के रूप में देखते हैं जहाँ सारे भौतिक पैमाने मिलकर हमारी इस धरती को अद्भुत एवं जीवन भरा ग्रह बनाते हैं।
1: यानी सभी तंत्रों की परस्पर क्रिया चलती रहती है जिससे हवा आंधी बारिश तूफान चक्रवात आदि आते हैं।
8: वो कैसे आंटी?
6: तो मानव
8: जी
6: पहले तुम 3 तंत्रों को अलग अलग रूप में समझ लो, फिर तुम्हें इनका आपसी संबंध आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मानव अपनी स्कूल की कोई पुस्तक या कॉपी ले आओ जरा।
8: वो क्यों अंकल?
6: अरे भाई तुमने मेरे सारे शोध पत्रों पर ड्राइंग बनाई थी, अब मैं तुम्हारी पुस्तकों पर ड्राइंग बनाकर उनको जरा थोड़ा सा रंग दो। क्यों?
2: मम्मी
1: अरे नहीं बेटा क्या इस्लाम भाई साहब आप भी ना बेचारा मानव इतनी मुश्किल से तो हिम्मत जोड़ पा रहा है और आप उसे तोड़ने में लगे हुए हैं।
6: ये बात है। अच्छा तो मानव चलो किताब रहने दो, चलो अब ध्यान से समझो, कुछ पल लेना पड़े तो बता जरूर देना।
8: जी। हाँ भाई, पिछले कुछ दशकों में धरती की प्रश्न है कि वातावरण,

0: महासागर, भूमि और यहाँ तक सभी जीव जंतु, जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं, सभी आपस में एक नाजुक तार से बंधे हुए हैं और किसी भी एक भाग की गतिविधि हर एक तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।
1: हैं? नाजुक तार से बंधे हुए हैं? कौन सा तार? मैंने तो कोई तार नहीं देखा।
2: मानव, अरे भाई मानव, यही तो ऐसा तार है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस सब करते हैं।
1: वो कैसे अंकल?
3: अब देख मानव, अब मैं पापा के स्कूटर पर रोज तुझे घुमाता हूँ, तुझे तो बड़ा मजा आता है ना?
1: हाँ भैया,
3: पर जो तुझे आजकल ज्यादा गर्मी लगती है उसमें कहीं ना कहीं इस स्कूटर की भी भूमिका है।
1: स्कूटर का गर्मी से क्या लेना?
0: लेना कैसे नहीं मानव, स्कूटर, कार, बस, फैक्ट्री आदि से निकलने वाले धुएं में ऐसी गैसें होती हैं जो गर्मी बढ़ाती हैं।
4: देखा मानव, विवेक भैया के साथ तेरा स्कूटर पर लगाया गया फालतू चक्कर कैसे पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है।
5: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि। तो मानव, यही है वो अदृश्य धागा जिससे हम सब बंधे हैं और हमारी जरा सी गड़बड़ी पूरे जीवन की डोर को ही तोड़ सकती है। अब समझ में कुछ आया मानव?
1: थोड़ा थोड़ा पापा,
5: थोड़ा।
2: चलो तुम्हें विस्तार से समझाते हैं। पहले वातावरण से शुरू करते हैं। अब मानव, जैसे तुम सागर से बहुत दूर यहां दिल्ली में रहते हो तो तुम्हें लगता है कि सागर या महासागर की तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका नहीं है, है ना?
1: हाँ अंकल।
0: पर बच्चों ऐसा नहीं है, महासागरों और वातावरण का एक साथ एक एकल तंत्र के रूप में ही अध्ययन किया जाता है क्योंकि ये एक समान पारस्परिक क्रिया तथा अदला बदली से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं।
2: हाँ बच्चों, दोनों ही महासागर और वातावरण अपने में होने वाली गतिशीलता के लिए ऊर्जा सूर्य से ही ग्रहण करते हैं, समझे?
6: और ताप या गर्मी में भिन्नता के कारण ही सघनता या दाब में भिन्नता आती है और ये भिन्नता या फर्क ही हवा तथा महासागर प्रवाह का आधार होते हैं।
3: अंकल, ये महासागर सूरज से आने वाले ताप या ऊष्मा के भंडारण का भी तो काम करते हैं ना?
6: हाँ विवेक, और देखो असल में महासागर जमीन की तुलना में ज्यादा गहराई तक गर्म हो जाते हैं।
0: हाँ, और जब ठंडी हवा इस गर्म पानी के संपर्क में आती है तो ये अपनी गर्मी या ऊष्मा वातावरण में छोड़ देते हैं। जो हवा महासागरों की सतह पर बहती है वो लहरें पैदा करती है और इस दौरान ये हवा जल वाष्प के साथ साथ पानी के तापमान के गुण भी अपने में समा लेती है।
5: हाँ तो भाई मानव, कुछ समझ आया?
1: शायद
2: भाई, ये क्या जवाब हुआ?
6: अरे भाई, लगता है मानव को सब धीरे धीरे समझाना पड़ेगा।
0: अच्छा तो मानव, जैसा मैंने पहले बताया था, शुरुआत वातावरण से करते हैं।
1: जी,
0: वातावरण असल में गैसों का आवरण होता है जो पूरी धरती को अपने में समेटे हुए है।
2: हाँ, जब सूरज से आने वाली किरणें हमारी धरती के वातावरण में प्रवेश करती हैं, तो कुछ तो बादल और धूल के कारण वापस ऊपर की ओर परिवर्तित कर दी जाती हैं और कुछ भू सतह की ओर बढ़ती हैं।
0: अच्छा, अब जो किरणें जमीन की सतह की ओर बढ़ रही हैं, वो जब सतह से टकराती हैं, तो कुछ विकिरण तो धरती सोख लेती है और कुछ विकिरण बर्फ, पानी तथा अन्य परावर्ती सतहों से टकराकर वापस अंतरिक्ष की ओर लौट जाती हैं।
1: अच्छा,
0: और धरती से टकराकर ये इंफ्रारेड विकिरण में बदल जाती है, यानी धरती भी ऊष्मा लौटाती है।
6: अब हमारे वातावरण में कुछ गैसें होती हैं जो अपने खास गुणों के कारण बाहर निकलने वाली लंबी तरंगों वाली इंफ्रारेड विकिरण को बचकर नहीं जाने देती और उनकी ऊर्जा को सोख लेती हैं। इस कारण ये वापस धरती से टकराती हैं और सतह के तापमान में बढ़ोतरी करती हैं।
2: ये घटना धरती के समूचे इतिहास में होती रही है और इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, समझे?
1: जी।
2: बगैर वातावरण और ग्रीन हाउस प्रभाव के यह धरती बर्फ से जम जाएगी और यहाँ जीवन संभव नहीं होगा, समझे?
1: समझ गया अंकल। हाँ। पर अब मुझे ना खेलने जाना चाहिए।
2: अरे अभी से?
1: मानव
2: अभी कहाँ चले, अभी तो मुझे तुमसे पुराना हिसाब किताब पूरा करना है।
1: पर वो...
6: और बेटे मानव, तुमने चार सवाल भी तो नहीं पूछे।
1: जी वो बेचारा मानव फंस गया। अंकल आपने सारी

0: बातें इतनी अच्छी तरह से समझाई है कि कोई सवाल पूछने के लिए ही नहीं है।
1: क्या बात है। मानव भाई हमने समझाया कहाँ है, अभी तो समझाना है भाई।
2: वैसे मानव बेटा
0: जी,
2: जीवन में बहुत कम मौके आते हैं जब सवाल पूछने का अवसर मिलता है और उनके जवाब जानने का भी। इसलिए भाई मेरा मानना है कि ऐसे मौकों को खोना नहीं चाहिए।
3: बिल्कुल।
2: और इसलिए अभी बैठ जाओ, खेलना बाद में, ठीक है?
0: ठीक है पापा। अच्छा अंकल, समुद्र में गति को मापने की इकाई को नॉट क्यों कहते हैं?
4: अरे वाह मानव बेटे, तुम्हारे पास तो बड़े रोचक सवाल है
0: जी।
4: भाभी मानव के इसी सवाल पर एक एक चाय हो जाए।
3: अरे बिल्कुल भाई साहब, आपने कहा और अभी लेकर आती हूँ।
5: पेट में नॉट पड़ रही है,
1: नॉट पड़ रही है।
0: हाँ तो मानव, तुम्हारे इस रोचक सवाल कि समुद्र में गति मापने की इकाई नॉट क्यों है का जवाब अब ध्यान से सुनो। भाई पुराने समय में नाविकों द्वारा गति नापने की विधि से ये नाम पड़ा है।
3: अच्छा।
4: असल में पुराने समय में नाविक एक रस्सी जिसके हर 14.4 मीटर पर एक गांठ बंधी होती थी, उस एक सिरे को लकड़ी के लट्ठे से बांधकर समुद्र में फेंक देते थे।
1: अब ये लकड़ी का लट्ठा अपने साथ रस्सी को खींचता है। अब हर 28 सेकंड में कितनी गांठें लट्ठे ने खींची हैं, इससे नाविक जहाज की गति का पता लगाते हैं। गांठ को अंग्रेजी में नॉट कहते हैं, इसलिए नाम पड़ गया।
0: आज एक नॉट मतलब 1.85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है, समझे?
3: जी आंटी।
2: अरे मानव, तुम बेकार में अपने इस्लाम अंकल से डरते हो, देखो वो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं।
0: हाँ पापा।
1: मानव ज्यादा खुश मत होना, सारी बातें खत्म करके मुझे तुम्हारी सब किताबों में अभी ड्राइंग भी बनानी है।
3: मम्मी क्यों तंग करते भाई साहब बच्चे को, लीजिए चाय लीजिए भाभी जी।
5: हाँ थोड़ी ब्रश तुम भी लो ना
1: जी। क्या बात है,
6: एक सवाल था। वातावरण की गैसों से आने वाली ऊर्जा और ऊर्जा छोड़ने के बीच में संतुलन बन पाता है, ठीक अंकल? पर वातावरण में कौन कौन सी गैसों का स्तर है?
1: हाँ तो विवेक, अब अगर शुष्क हवा में देखें तो मुख्यतः नाइट्रोजन लगभग 79% है।
6: अच्छा।
1: ऑक्सीजन 20%
6: और
1: आर्गन करीब 1% के आसपास है।
6: अच्छा।
1: जबकि वाष्प जो भिन्न भिन्न मात्रा में वातावरण में मौजूद है, एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, समझे?
0: और अन्य ग्रीन हाउस गैसें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में वातावरण में मौजूद होती हैं, जिन्हें पार्ट्स पर बिलियन यानी PPB में मापते हैं।
7: अल्पना आंटी, पार्ट्स पर बिलियन का मतलब हुआ 1/1000 हिस्सा। इतनी छोटी मात्रा में इन गैसों का क्या फायदा या नुकसान?
4: नहीं सृष्टि बेटे, ऐसा नहीं है। हा? एक सूक्ष्म गैस जिस पर आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
1: इस कार्बन डाइऑक्साइड का वर्तमान में स्तर 0.034% के लगभग है और इतनी सी मात्रा में ये अच्छी खासी गर्मी पैदा करने में सक्षम है, जानते हो?
3: मिसेस मल्होत्रा आइए। भाई साहब ये हमारी पड़ोसन है मिसेस मल्होत्रा।
8: ओ जी नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार, आइए आइए मिसेस मल्होत्रा, कैसे आना हुआ आपका?
8: ओ जी वो अपना मानव आज हैप्पी के साथ खेलने नहीं आया, इसलिए देखने आई थी, कहीं तबीयत तो नहीं खराब है जी?
7: हाँ आंटी, मानव की तबीयत तो वाकई इस समय बहुत खराब है।
3: नहीं नहीं मिसेस मल्होत्रा, ऐसी कोई बात नहीं, असल में ये मानव के पापा के दोस्त डॉक्टर इस्लाम
8: जी,
3: ये हैं डॉक्टर ब्रजमोहन और आप उनकी पत्नी डॉक्टर अल्पना जी हैं।
8: नमस्कार।
3: ये मानव को वातावरण और महासागरों के बारे में कुछ समझा रहे थे इसीलिए।
8: हैं ओ जी, आप डॉक्टर हो तो बीमारी शिमारी की बातें करो ना जी, ये समुद्र से हमारा क्या लेना देना, और वातावरण तो पहले ही खराब है ना जी।
2: और नहीं नहीं परजाही जी, असल में ये बीमारी वाले डॉक्टर नहीं बल्कि समुद्र और वातावरण पर शोध करने वाले वैज्ञानिक हैं। आखिर आप बैठिए ना हमारे साथ, चाय पीजिए, आइए बैठिए।
8: जी भाई साहब जरूर बैठूंगी, पर वसुधा जरा चाय में थोड़ी चीनी ज्यादा डालो।
2: अच्छा, मुझे लगा था चीनी कम डालनी है।

0: पे जोर है, आप ज्यादा कहती है तो ज्यादा चीनी वाली चाय लाती हो।
1: हाँ तो अंकल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा आजकल मीथेन गैस के बारे में भी बहुत बातें हो रही हैं, है ना?
2: हाँ सृष्टि बेटे, बिल्कुल ठीक कहा। मीथेन भी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है और इसके बढ़ने का एक प्रमुख कारण बढ़ती मानव आबादी है।
3: ओ जी डॉक्टर साहब, बढ़ती मानव आबादी पर अपनी कॉलोनी में तो एक ही मानव है और वो है ये हमारा मानव पुत्र।
4: नहीं नहीं मिसेज मल्होत्रा जी, असल में इस्लाम का मतलब पूरी मानव सभ्यता से है।
3: ओ जी,
4: हाँ तो सृष्टि बेटी, हमारी मवेशियों की बढ़ती आबादी तथा मुख्यतः धान की खेती से मीथेन का स्तर तेजी से बढ़ रहा है।
5: पहले मीथेन का स्तर करीब 0.003% था जो अब बढ़कर 0.018% हो गया है।
1: अच्छा,
5: ऐसे ही पहले कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 18वीं सदी की शुरुआत में 0.028% था जो अब 0.034% के करीब है।
0: जी भाभी जी, चाय चीनी पूरे 3 चम्मच।
3: थैंक यू वसुधा। ओ जी डॉक्टर साहब, अब इतनी सी मात्रा बढ़ने से क्या होता है जी? अब चाय में चीनी 3 चम्मच डालो या 3.5, क्या फर्क पड़ता है जी?
2: हाँ मल्होत्रा भाभी जी, ये जानने के लिए तो आपको भी हमारे साथ रोज बैठना पड़ेगा। अभी तो हम वातावरण की बात कर रहे हैं, फिर इन दोनों के बीच के परस्पर संबंध समझाएंगे, अभी तो आप 3 चम्मच और 3.5 चम्मच का फर्क जान पाएंगे।
3: ओ जी, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा जी। मुझे तो मल्होत्रा साहब का और हैप्पी के लिए खाना भी तो बनाना है जी।
4: अरे नहीं नहीं नहीं, सारी बातें आज नहीं, धीरे धीरे करेंगे। अभी तो आप ये भी जानेंगे कि कैसे जंगल कार्बन और नमी का भंडार होते हैं और कैसे समुद्री जीव कार्बन सोखते हैं।
5: अब महासागरों में वातावरण के कारण महासंचार होता है और इससे समुद्री पानी के गुणों में अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है।
2: अब जिस वातावरण की हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर उसकी प्रकृति महासागरों पर निर्भर करती है और ज्यादातर उसकी ऊर्जा का स्रोत भी महासागर ही होता है।
4: बारिश आंधी आदि सभी इन महासागरों और वातावरण के आपसी तालमेल का ही नतीजा है। चलो मानव, आज तुम हैप्पी के साथ खेलने जाओ, पर कल हैप्पी को भी जरूर लेकर आना। और हाँ, तुम्हें और हैप्पी को मिलकर 4 सवाल जरूर पूछने होंगे।
2: मानव
6: जी।
2: हाँ चलो सूर्य प्रकाश, हम भी थोड़ा टहल आए, बैठे बैठे थक गए, और लौट कर मुझे मानव की किताबों पर ड्राइंग भी तो करनी है।
3: अरे मम्मी।
0: अंकल को ड्राइंग एक दिन।
2: अच्छा आप भी आना कल।
3: हाँ जी,
2: खूब सारी बातें करेंगे।
3: जरूर आऊंगी। वैसे मेरे हैप्पी को महासागरों के बारे में खूब पता है जी।
5: तो चलिए कल उससे भी मिल लेते हैं।
7: आओ इस्लाम ब्रिज, थोड़ा टहलाए। तुम भी चलो विवेक।
1: मम्मी, इस्लाम अंकल और ब्रज अंकल को कितनी जानकारी है ना?
0: बिल्कुल है बेटा, और तुम्हारी अल्पना आंटी को भी।
6: लेकिन मम्मी, वो इस्लाम अंकल मेरी किताबें गंदी कर देंगे।
5: भाई अब वो तो बाद में ही पता चलेगा, अभी तो तुम जाओ और खेलाओ। जाओ।
3: अच्छा वसुधा, मैं चलती हूँ, कल अपने हैप्पी को लेकर आऊंगी। अच्छा सृष्टि।
6: अच्छा आंटी।
3: अच्छा अल्पना जी, बाय बाय
0: बाय बाय बाय बाय।

0: ईडी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीबी यानी एमडीआर टीबी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं, और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा, और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं, और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव, यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसकी

0: जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है, जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से, न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
5: एफएम। आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम रोल नंबर एक।
6: साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर।
5: अरे वाह। नंबर दो।
7: मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर।
5: शाबाश। नंबर तीन।
6: बंद करो खुले में जाना, घर घर शौचालय बनवाना।
5: बढ़िया। रोल नंबर चार।
8: शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ।
5: अरे वाह। तुम
6: हैंड पंप के आसपास से सब गंदगी निकालो, पीने वाले पानी में क्लोरीन की गोली डालो।
5: बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। चलो अब सब बच्चों के लिए ताली बजाते हैं।
9: बच्चे तो ये बात जानते हैं, आप भी जान लीजिए।
10: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम।

सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जाँच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: आई एम सॉरी नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: अच्छा दुष्यंत, मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो व्हाट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: यू नो शैम, इट रियली हर्ट्स।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं।

0: और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
1: ल्यूटियल चरण। ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, अस्तरों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है, जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
2: माहवारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुण शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुण शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। हाँ जी मैडम, किधर चलना है?
1: चले शहर घूमने।
0: चलो फिर।

0: हाँ जी मैडम आया मजा या और घूमना है।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: यू गॉट टू।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाए और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नील डिमेलो, डू यू टेक कैरल वास एज योर लॉफुली वेडेड वाइफ?
2: I do.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
5: म्यूजिक, देसी ट्रैप, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर सिमरन कौर टडली, टाइटल दिलबर जानी। लेट्स लिसन टू इट ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hi Priya, tum itni tension mein kyun ho? Aakhir hua kya tumhe?
2: Rohan, ab kya batau? Itne sare course hai, samajh nahi aa raha bachelor's mein admission kahan lu?
1: Acha Priya, ye batao ki tumhe life mein karna kya hai?
2: Mujhe main chahti hu meri awaaz puri duniya mein goonje. मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ. मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ. मैं चाहती हूँ.
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो. तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो.
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा.
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें.
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है.
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं. और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है.
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं. यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी. यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in.

0: आप ही के लिए है तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: दो दीवाने शहर में, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी, सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक। दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा, सो लेट्स एंजॉय इट, केवल सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाएं। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. You are listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा?
1: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओकेरा के तुरंत साफ करेनी, जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।
1: वाह,

0: गया, दिमागी बुखार से बच्ची तबेगा। बस अमली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा।

0: यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचे। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: Yeah, Gagan Kokri Fateh.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: जब टीचर हमारी क्लास में अटेंडेंस लेते हैं और अगर कोई बच्चा मिसिंग होता है तो जब हम उसके बारे में पता करते हैं और अगर हमें पता चलता है कि उस बच्चे को बुखार है तो फिर हम तुरंत आशा से संपर्क करते हैं जो उसी गांव की होती हैं, वो आती हैं और हम उन्हें उन बच्चों के बारे में बताते हैं कि आप जाकर देखिए। फिर वो उनके घर जाती हैं, उनकी कंडीशन देखती हैं और फिर जैसा होता है वैसा वो उनको रेफर करती हैं।
1: चाहे कुछ भी हो मजबूरी,
2: मच्छरों से खुद को बचाना है,
1: मच्छरों से खुद को बचाना है।
2: दिमागी बुखार पर सीधा वार,
1: दिमागी बुखार पर सीधा वार,
2: सुरक्षित होगा हर परिवार,
1: सुरक्षित होगा हर परिवार।
0: बच्चों को निबंध के माध्यम से, भाषण शैली के माध्यम से जागरूक करते हैं और बच्चों को पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से भी जागरूक करते हैं और बच्चे उसे अपने घर जाकर के अपने अभिभावकों को बताते हैं।
3: मेरी बेटी स्कूल से जो सब सीख के आती है वो सब हम घर पे पालन करते हैं, जैसे कि हाथ धोना, गड्ढे में पानी इकट्ठा न रहने देना, मच्छरदानी लगाकर सोते हैं क्योंकि हमें मच्छर काटेगा तो बुखार हो जाएगा। और बच्चे जो स्कूल से सीख के आते हैं वो इसे सब बच्चे अपने घर पे अच्छे से पालन करें।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: mixing in the house.
1: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
3: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
2: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
3: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
2: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
4: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
3: कल नहीं, अभी।
4: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
5: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
3: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
2: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
4: हाँ माँ जी।
5: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
6: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
8: बिल्कुल सोचा है पापा।
7: क्या सोचा है?
8: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
7: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
8: जी पापा।
7: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
8: हाँ पापा बिल्कुल।
9: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग

दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को। सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।